ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

कानवे दशमलव दो मेगा हर पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: कानवा दशमलव 2 MHz पर यह तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ई बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।
1: टेडी मेडी चा

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
1: टेस्ट
0: टेस्ट
1: टेस्ट।
2: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
3: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
8: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
9: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो। मोहब्बत हमसे वफा गैरों से, ये हुनर कहाँ से लाते हो। करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल, जो कभी मेरे ख्वाबों में तुम चले आते हो।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: टेस्टिंग
3: टेस्ट
1: टेस्ट
3: टेस्ट
2: टेस्ट।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
10: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही ढेर सारी जानकारियों के साथ इस प्यारे से मौसम के साथ। जी दोस्तों, बरसात का मौसम है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा। तो आज 31 जुलाई 2026 का दिन, यानी कि जुलाई महीने का आखिरी दिन। तो देखिए दोस्तों, समय किस तरह से भागता जा रहा है और हमें भी उसी तरह से भगाकर आगे की ओर लेकर जा रहा है। दोस्तों, हर ठोकर ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन हर बार उठने का हुनर भी उसी ने सिखाया। जिंदगी ने कभी फूलों की राह नहीं दी, मगर कांटों पर चलकर मुस्कुराना जरूर सिखा दिया। जब अपने ही दूर होने लगे, तब समझ आया कि सबसे मजबूत सहारा अपना हौसला होता है। कई रातें ऐसी भी गुजरी जब आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपनों की आग थी। और इसी सहारे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से लम्हों के साथ। तो आइए दोस्तों, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातों के साथ।

दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़ चुके हैं, तो आइए दोस्तों अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और अपडेट की ओर चलते हैं मौसम की। तो दोस्तों, इस समय आंखों देखा हाल आप सभी को बता दूं धर्मशाला का, खास करके हमारे अपने रेडियो सेट की लोकेशन का। तो बहुत ही प्यारी सी इस समय ना बारिश लगी हुई है। खैर, जब ज़्यादा ही बरसात हो जाती है तो प्यारी सी तो नहीं रहती है, लेकिन बरसात की बारिश अच्छी ही लगती है। ठंडी ठंडी सी गर्मी भी होती है, हल्की फुल्की सी, लेकिन हाँ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जब ये बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं उस गर्मी से राहत भी मिलती है। लेकिन हाँ, बरसात में और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर रहता है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं बाढ़ का पानी जो है वो घरों में आ रहा है, तो इस तरह से वो भी हमें सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सभी महसूस कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और इस प्यारे से गीत के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और दोस्तों, ढेर सारी बातें और ढेर सारी जानकारियाँ अभी आप सभी तक पहुँचना बाकी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र आप सभी बहुत ही प्यार से इंजॉय करने वाले हैं जी दोस्तों। और ख़ास करके आप सभी जानते हैं कि एक सतर्कता और सावधानी जो है हमें हर टाइम जो है वो बरतने की ज़रूरत है, और उन्हीं में से एक है कि जो आवारा पशु हैं बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों, क्योंकि लोगों ने घरों से छोड़ दिए हैं और बेचारे यहाँ सड़कों में या यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर वो आगे दिख भी जाए, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हैं, तो थोड़ा वेट कर ले या फिर किसी के साथ आप वहाँ से निकले, ऐसा ना हो कि आपकी जान जोखिम में डल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अकेले होते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं होती है कि क्या करें क्या ना करें, एकदम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक कहीं भी जाना हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक ही निकले, क्योंकि दोस्तों उनकी भी गलती नहीं है, क्या कर सकते हैं, बारिश है और बारिश में वो भी कहाँ जाए, सर पे छत और 2 वक्त की रोटी, बस यही तो हर किसी को चाहिए, चाहे वो पशु है चाहे वो इंसान है। तो इसी बात के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: प्यारे से गीत को हम जरूर इंजॉय करेंगे, लेकिन नाउ आप सभी जानते हैं कि समय समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। तो 9:20 हो चुके हैं और अब समय है कुछ खास जानकारियों का, यानी कि प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद वापस आएंगे अपने इस प्यारे से गीत और ढेर सारी बातों के साथ।
1: कड़ी सजा का किया गया प्रावधान, प्रधानमंत्री ने कहा विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है प्रभावी कदम, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को बताया अनुचित। चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में विद्यार्थियों ने एंटी चिट्टा अभियान चलाकर युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। और राज्य के अनेक स्थानों पर बीती रात मॉनसून की भारी वर्षा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चौरा के समीप चट्टाने खिसकने से किन्नौर जिला के लिए यातायात बाधित। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करना होगा। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के युवा विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पिछले दशक में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए ये कानून महत्वपूर्ण है।
2: हम संसद में बिल लेकर के गए थे, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई समय की मांग है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी शिक्षित राज्यों की सूची में शुमार है और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश में लगातार नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। उन्होंने सोलन में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में दिव्यांग बच्चों को सुगम तकनीक से शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित जिला संस्थान कक्ष का लोकार्पण किया। इस पर 45 लाख रुपए की लागत आई है। शांडिल ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा की बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। शांडिल ने बताया कि सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने और निजी शत्रुता निकालने के लिए राज्य सरकार भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामियों को लेकर आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री विजिलेंस की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई इसका ज्वलंत उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के कुछ अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त दी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन किया है।

0: प्रदेश में युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक स्थानों पर इसे लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। चंबा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान भी प्रशासन द्वारा एंटी चिट्टा अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। इस मौके पर विशेष नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला चंबा के संवाददाता।
1: चंबा में एंटी चिट्टा अभियान की छाप जिला में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान भी देखने को मिली। इस दौरान विशेष नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। इन नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां राजकीय महाविद्यालय चंबा के विद्यार्थियों तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रशिक्षु चिकित्सकों द्वारा दी गई। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने में अवश्य कारगर भूमिका निभाएंगे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिला के दूरदराज व सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने केलंग में अधिकारियों के एक साथ एक बैठक में प्राथमिकता वाले सभी गांवों तक जल्द 4G नेटवर्क पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला के 521 गांव में से 391 गांव पहले ही 4G नेटवर्क से जुड़े हैं। उपायुक्त ने स्पीति के धार, सुकमांड और उदयपुर के RF दारेड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में नए मोबाइल टावर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने BSNL और अन्य दूर संचार कंपनियों को नेटवर्क सुधारने, कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने और खराब पड़े VSAT जल्द चालू करने को कहा। उपायुक्त ने बताया कि भारत नेट परियोजना के तहत जिला की 45 ग्राम पंचायतों को 448 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर बीती रात मॉनसून की भारी वर्षा हुई। कुल्लू जिला के धुंधी और सोलंग नाला क्षेत्र में जोरदार वर्षा से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है। शिमला व किन्नौर की सीमा पर चौरा के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चट्टाने गिरने से किन्नौर जिला के लिए सड़क यातायात फिलहाल बाधित बना हुआ है। प्रशासन ने चट्टाने हटाने के लिए मशीनरी तैनात की है और कुछ देर बाद ये सड़क बहाल होने की उम्मीद है। उधर चंबा और सिरमौर जिलों में भी वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज सिरमौर सहित राज्य के अनेक जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है। हिमाचल में सरकार इस वर्ष खरीदेगी 100 हाइड्रोजन और 1000 ई बसें। इसी खबर को लेकर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, सीएम सुक्खू ने सोलन के क्यारीघाट से नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। जबकि दैनिक जागरण के शब्द हैं, इस वर्ष 1000 ई बसें खरीदेंगे। दिव्य हिमाचल लिखता है, धर्मशाला में विधायक पर FIR, आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने सुधीर शर्मा पर कसा शिकंजा। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, हिमाचल में नेताओं की संपत्ति पर मचा सियासी संग्राम। अमर उजाले की एक अन्य खबर है, नर्सों की भर्ती जारी रहेगी, नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर की होगी। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कोर एरिया के निजी जमीनों को मार्केट वैल्यू पर खरीदेगी सरकार। भारतेंदु शिखर लिखता है, 6 से 8 अगस्त तक रहेंगे जनसंवाद कार्यक्रम, जरूरतमंद परिवारों की समस्याओं पर बनेगी कार्य योजना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक संसद में पारित, दोषियों के लिए कड़ी सजा का किया गया प्रावधान। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार उठा रही है प्रभावी कदम, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता। विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को बताया अनुचित। चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में विद्यार्थियों ने एंटी चिट्टा अभियान चलाकर युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। और राज्य के अनेक स्थानों पर बीती रात मॉनसून की भारी वर्षा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चौरा के समीप चट्टाने खिसकने से किन्नौर जिला के लिए यातायात बाधित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि दर्पण में चेहरा और दुनिया में सुख हमेशा वास्तविक नहीं होते, कई बार वो सिर्फ दिखाई देते हैं। इसलिए रिश्ते सबसे बना कर रखिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। सिर्फ पैसे ही दौलत नहीं होती, रिश्ते, अपनापन और अच्छा व्यवहार, वो भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। तो आइए दोस्तों, हम बहुत ही प्यारा सा गीत जो है समाचारों से पहले एंजॉय कर रहे थे, तो उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

रतन मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों के साथ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत का रुख करते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी तथा 100 हाइड्रोजन बसें भी खरीदने पर विचार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के प्रकृति एवं वातावरण को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सोलन जिला के क्यारी घाट में 297 ई बसों को रवाना करने के दौरान कही। उनका कहना है कि एक साथ 297 ई बसें चलना हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। इन इलेक्ट्रिक बसों से न केवल लोगों को बल्कि पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जी दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का एक कहते हैं ना देख रेख, वो भी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फ्री में बहुत कुछ देते हैं, प्रकृति की देन है और उस देन को समझना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गढ़वाने धर्मशाला में। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, हम अपने आसपास अगर नजर दौड़ाएं, देश विदेश तक इस नजर को दौड़ाएं, तो बहुत सी बातें हमारे सामने नजर आती हैं। हम इस कुछ समय की ही बात करें, हाल ही की बात करें, तो जो कि प्रोटेस्ट चल रहा था युवाओं की आवाज में, जो आवाज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक नहीं रही, वो देश विदेश तक गूंज रही है और आज तक गूंज रही है। और उस आवाज ने हर एक इंसान को जगा दिया जो शायद सो रहे थे या जिनकी आंखों पर शायद पट्टी बंधी हुई थी, उनकी वो पट्टी भी खुल चुकी है, यानी कि इंसानियत जाग चुकी है। लोगों में ये समझ आ गई है कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। ये बात आज के जेंजी हों चाहे युवा हों, तो उन्होंने ये हर एक इंसान को बताया है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, उसी से जुड़ी कुछ खास नजर डालेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने केवल एक परीक्षा या पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि देश के युवाओं की कई अनसुनी आवाजों को सामने लाया। जी दोस्तों, एक आवाज और उस आवाज के साथ न जाने कितनी आवाजें जुड़ती गईं। जैसे जैसे जिसे जिसे समझ आया, जैसे जिसे सही की परख हुई, वो हर एक आवाज उस आवाज के साथ जुड़ती गई और वो आवाज आज पूरे देश विदेश तक गूंज रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। और सबसे खास बात, जो हमारे अंदर की इंसानियत कहीं दब सी गई थी, कहीं विलुप्त सी हो गई थी, उसे जागृत कर रही है। सही गलत की समझ इस प्रोटेस्ट ने बहुत से लोगों को सिखाई है और बहुत से लोगों को दिखाई है ये हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी है तो डिसीजंस भी हमारे होने चाहिए। देश विकसित कब होता है, देश का विकास कब होता है, जब उस देश के युवा शिक्षित हों, शिक्षा व्यवस्था सही हो और युवा जो है अपनी मंजिल तक आगे बढ़े। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है, अगर शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठे हैं, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी इस देश के युवाओं की भी है। और वही आवाज आज एक जागरूक बनकर हमारे सामने है। तो आइए दोस्तों, इसी खास बात के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों, चोर और चांद मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत अनुराधा पौडवाल, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों के साथ आप सभी तक पहुंचाया आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रचेगा ने। जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी डेली रूटीन के साथ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम भी अपने कार्यक्रम की रूटीन को बरकरार रखते हुए नजर डालते हैं एक और प्यारी सी खास जानकारी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नए हिमबस प्लस कार्ड की शुरुआत हो गई है। सोलन जिला के क्यारी घाट से प्रदेश मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस कार्ड की विधिवत रूप से शुरुआत की। उनका कहना है कि हिमबस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। ये स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाओं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। ये कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। जी दोस्तों, अग्निहोत्री जी ने कहा कि भविष्य में केवल 47 सीटर श्रेणी की डीजल बसों की ही खरीद की जाएगी, जबकि राज्य में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उनका कहना है कि अगले 12 वर्षों तक कंपनी द्वारा इन बसों का रखरखाव किया जाएगा और इसे और खूबसूरत बनाया जाएगा। जी दोस्तों, इस बहुत ही खास जानकारी को आप सभी तक पहुंचाया गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, कितना भी सुलझा लो इस जिंदगी को, पर कोई ना कोई सवाल रह ही जाता है। कितना भी सुख पालो जिंदगी में, पर कोई ना कोई मलाल रह ही जाता है। कितना भी सोचो गहराई से जिंदगी को, पर कोई ना कोई ख्याल जरूर रह जाता है। कितना भी खामोश हो मंजर जिंदगी का, पर कोई ना कोई बवाल रह ही जाता है। कितने भी तरक्की कर लो जिंदगी में, पर कोई ना कोई मिसाल रह ही जाता है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों कहते हैं ना कि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो केवल विरोध नहीं करते, वो अपने भविष्य की चिंता, अपने सपनों और अपनी उम्मीदों को भी सामने रखते हैं। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल भी उभर कर सामने आए। रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, बढ़ती प्रतियोगिता, मानसिक दबाव, आर्थिक असमानता। आंदोलन की शुरुआत परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक के विरोध से हुई, लेकिन जब छात्र एक मंच पर आए तो उनकी बातें सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रही। उनका कहना था, हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए, हमें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, बेहतर अवसर चाहिए। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही, खास बात रही। हर युवा की अपनी एक कहानी, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कोई इंजीनियरिंग के बाद भी बेरोजगार है, कोई परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। जी दोस्तों, तो हर किसी युवा की अपनी जिंदगी में अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग कहानी के साथ हर कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस मेहनत के बाद अगर व्यवस्था सही नहीं है तो फिर तो सवाल पूछना बनता है। जी दोस्तों, कहते हैं ना, इतनी मुश्किलों के बाद मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचना आसान बात नहीं होती है। तो अपने हक के लिए लड़ना, अपनी आवाज़ को उठाना हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। तो वहाँ हम किसी के पीछे चलकर ये ना सोचें कि हम सिर्फ अकेले हैं। जब एक अकेली आवाज़ उठती है तो बहुत सारी आवाज़ें, जब उन्हें सही गलत की समझ हो जाती है तो फर्क सामने दिखता है, जो कि हम सभी ने देखा। तो फिलहाल दोस्तों, आइए और भी बात करेंगे इस पे, क्योंकि ये बहुत ही खास और गंभीर से बातचीत है। लेकिन फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों भारत में शिक्षा की हम बात करें तो भारत में शिक्षा पूरी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है जी। दोस्तों पहले और अभी का अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले बहुत कम बच्चे जो थे वो शिक्षा पूरी कर पाते थे। पहले की सिचुएशंस अलग थे, हालात जो थे वो अलग थे, और ख़ास करके लड़कियों को ज़्यादा जो था वो नहीं पढ़ाया जाता था, और लड़के भी कुछ हद तक मतलब कि एक लिमिट तक पढ़ाई करते थे और उसके बाद जो है उन्हें जॉब्स वगैरह मिल जाती थी। तो मतलब अलग अलग एक स्ट्रक्चर था, अलग एक जो शेड्यूलिंग थी। लेकिन आज के समय में हम देखें तो हर एक युवा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत कम होंगे जो शिक्षित नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम संख्या देखें तो वो युवाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जो रुझान है शिक्षा की ओर। क्योंकि हम सभी यही मानते हैं कि शिक्षा के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है, शिक्षित नहीं है तो लोग हमें जानेंगे नहीं, लोग हमें पहचानेंगे नहीं, हमारी कद्र नहीं करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें अनपढ़ के नाम से टैग किया जाएगा। तो अनपढ़ किसको पसंद होगा सुनना, वो भी आज की डेट में। लेकिन दोस्तों रोजगार उसी गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। शिक्षा पूरी करने के क्षेत्र में उस तरह से रोजगार की गति नहीं बढ़ी। यही कारण है कि डिग्री और नौकरी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों को अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार केवल लगभग 16% युवाओं के पास तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण है। लगभग 86 लाख बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या रोजगार से बाहर है। जब शिक्षा और रोजगार के बीच संतुलन नहीं बनता तो युवाओं में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। जे दोस्तों तो ये छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से आंकड़े जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम सामने होते हुए भी इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो फिलहाल आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से वापस आते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से। आइए इसी गीत के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर।

दोस्तों आप सभी जानते हैं आज जुलाई का मतलब कि जुलाई महीने का आखिरी दिन और अगस्त की कल से शुरुआत होने वाली है। और अगस्त हमारे लिए वैसे भी बहुत खास रहता है। 15 अगस्त का दिन नज़दीक आ रहा है, भारत की आज़ादी के दिन। जी दोस्तों, तो बहुत ही खास जानकारी ये सामने आ रही है, मतलब न्यूज़ जो है हमारे सामने बहुत ही एक तरह से खौफनाक भी है, क्योंकि भय जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है हर किसी के दिलों में। तो 15 अगस्त भारत की आज़ादी के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय व जिला कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला के केंद्रीय विद्यालय बॉयज स्कूल सहित आर्मी क्षेत्र कैंट को ईमेल के माध्यम से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला जो है वो सामने आया है। दोस्तों मामले में पुलिस थाना धर्मशाला सहित सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही ईमेल भेजने वाले सोर्स

भी अपने आसपास ऐसे डाउटफुली चीज़ें दिखें या लगें तो वो ज़रूर आप जो है पुलिस स्टेशन जाके या सीधे संपर्क करके जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। चुप रहकर जो है हम सिर्फ गलत चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो सावधानी और सतर्कता ही हमारे भविष्य के लिए या पूरे देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी की जान, सभी की जिंदगियां हम सभी के लिए एक समान होते हैं। सिर्फ अपने बारे में स्वार्थी बनकर नहीं सोचना होता है, सबके बारे में सोचकर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो फिलहाल आइए दोस्तों हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही खास जानकारी के साथ। इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर। इससे पहले कि हम बातचीत की ओर रुक करें, जो कि आज का हमारा बहुत ही खास विषय भी है, उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ फिर से रुक करते हैं अपनी बातचीत की ओर। दोस्तों व्यवस्था की हम बात करें तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक पूरी तरह से सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं मुश्किलें हम सभी लोगों को फेस करनी ही पड़ती हैं। लेकिन फिलहाल हम बात शिक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं, तो दोस्तों एक छात्र की जुबानी अगर हम सुने तो उनका कहना होता है कि हम न जाने कितने ही सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हर साल परीक्षाएं टल जाती हैं या कोई विवाद सामने आ जाता है, इन सब में सबसे मुश्किल अगर होता है तो वो होता है इंतजार। अगर छात्राओं की हम बात करें तो उनका कहना होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा हर किसी की पहुंच में नहीं है। अभिभावकों की नजर अगर हम दौड़ाएं की तरफ तो हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन नौकरी मिलने तक पूरा परिवार तनाव में रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज आवश्यकता केवल नई नौकरियों की नहीं बल्कि कौशल आधारित शिक्षा की भी है। दोस्तों समाचार रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण ग्राफ जो है वो देखने को मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ा है लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं। रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है, कौशल विकास की आवश्यकता पहले से अधिक है, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अंतर बना हुआ है। हर आंदोलन केवल विरोध नहीं होता, वो समाज के सामने एक आईना भी रखता है। युवाओं की सबसे बड़ी मांग केवल नौकरी नहीं है, वो चाहते हैं पारदर्शिता, समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार। युवा केवल देश का भविष्य नहीं वर्तमान भी है, उनकी आवाज सुनना, समझना और समाधान की दिशा में काम करना हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि ये फिजूल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये इन सब चीजों में जुड़े हुए हैं। अपने भविष्य की चिंता करना, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही चलाने की मांग करना, क्या ये फालतू के काम है? एक बार सोच कर देखिए, इस बात पे विचार करके देखिए, क्या वो गलत है या हमारी मानसिक सोच गलत है? ये आपके हाथों में है, आप सही इससे जानते हैं। लेकिन उस पट्टी को हटा कर सोचिएगा, अगर पट्टी बांध कर सोचेंगे तो हम सिर्फ दूसरों में ही कमियां निकालते रहेंगे। तो जरूर इस बात पे गौर कीजिए, विचार कीजिए। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आज के इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से सफर को आप सभी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर। दोस्तों दिव्यांगजनों की प्रतिभा को नमन करने और उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। असीम योजना के तहत घोषित ये राज्य स्तरीय पुरस्कार न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों और स्वावलंबी व्यक्तियों की मेहनत को सम्मानित करेंगे बल्कि उन्हें 30,000 रुपए तक की नकद प्रोत्साहन राशि और राज्य स्तरीय पहचान भी दिलाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पहल उन निजी व सरकारी संस्थानों और जिलों को भी पुरस्कृत करेगी जो दिव्यांगों को रोजगार देकर समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026-27 के इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किया जाएगा। जी दोस्तों, योग्य उम्मीदवार एवं संस्थान निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। चयनित विजेताओं को 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार विजेता को 30,000 रुपए की नकद राशि व प्रमाण पत्र और द्वितीय पुरस्कार विजेता को 20,000 रुपए की नकद राशि व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जी दोस्तों, तो आइए इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कौन कौन सी 5 प्रमुख श्रेणियां हैं ये भी आपको बता देते हैं जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता वेस्ट एम्प्लॉयर, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी वेस्ट एम्प्लॉय विथ डिसेबिलिटी, सर्वश्रेष्ठ स्वनियोजित दिव्यांग व्यक्ति वेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्वश्रेष्ठ संस्थान या विभाग वेस्ट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, सर्वश्रेष्ठ जिला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, जहां हम बात कर रहे हैं चुनौतियों की, खास करके शिक्षा व्यवस्था के चलते बच्चों की जिंदगी में, तो वहीं हम अगर हिमाचल पे नजर दौड़ाएं तो दोस्तों सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्षों का इंतजार, निजी क्षेत्र में सीमित अवसर, पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन, कृषि और बागवानी से युवाओं का घटता जुड़ाव, पर्यटन और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि हिमाचल में रोजगार के नए अवसर इन क्षेत्रों में विकसित किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? पर्यटन एवं एडवेंचर टूरिज्म, एप्पल और अन्य फल आधारित प्रोसेसिंग उद्योग, जैविक खेती, आईटी एवं डिजिटल सेवाएं, स्टार्टअप और उद्यमिता, नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास कार्यक्रम, हिमाचल और युवा आंदोलन। जी दोस्तों, हिमाचल के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है तो ऐसी नीतियों की जो शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच की दूरी को कम करें। यदि स्थानीय संसाधनों, पर्यटन, कृषि बागवानी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को युवाओं से जोड़ा जाए तो हिमाचल न केवल रोजगार देने वाला बल्कि नवाचार और उद्यमिता का भी अग्रणी राज्य बन सकता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, जिस मन में संतोष होता है वहीं तुलना की कोई जगह नहीं होती। जो व्यक्ति अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है वो जीवन की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा लेता है। रिश्तों को शब्दों से नहीं, सम्मान, विश्वास और धैर्य से मजबूत बनाया जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने।

आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तो आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
1: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
2: टेस्ट
3: टेस्टिंग
4: टेस्ट
2: टेस्ट
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
11: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
12: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों कि बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो एक बार फिर से कार्यक्रम लेकर मेरे हौसलों की उड़ान हाजिर हो गई हूँ दोस्तों, और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है रूमा जी। तो रूमा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों के साथ।
1: बिल्कुल रुचिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे दोस्तों का भी जो हमें इतने इत्मीनान से सुनते हैं और हमारी कही बातों के ऊपर काफी ज्यादा विचार भी करते हैं और काफी सारा सहयोग हमें दे रहे हैं इस कार्यक्रम को और भी अधिक आकर्षक और मन भावन बनाने में।
0: जी बिल्कुल रूमा जी, बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि हमारे दोस्तों का साथ जब तक हमारे साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ है ना, तो मन करता है कि बस हम आते तो एक हफ्ते के बाद है, लेकिन मन करता है कि जब भी उनकी याद आए तो बस आ जाए उनके साथ प्रोग्राम करने के लिए। पर क्या करें,
1: बिल्कुल
0: समय की पाबंदी।
1: और ये पाबंदियाँ देखिए ना, एक तरह से हमें अनुशासित भी करती
0: है। बिल्कुल,
1: जब हम किसी पाबंदी में रह के कोई काम करते हैं तो हमें हमारी लिमिट्स पता होती है, हमें पता होता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और देखो रुचिका, आपने देखा अभी हम सबके अंदर एक बहुत ही गहरा जज्बा भरा हुआ है, देश का बच्चा बच्चा जो है उसमें भी देश प्रेम जागा हुआ है। जब भी हमारे देश के ऊपर बाहरी कोई सुरक्षा की बात आती है, बाहरी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है या किसी भी प्रकार की कोई चुनौती का हमें सामना करना पड़ता है, तो देश का छोटा छोटा बच्चा भी पूरे देश प्रेम के जज्बे से भर जाता है और चाहता है कि हम भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें। लेकिन देखिए, ये हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: देखो ना तो हम सेना में हैं, ना हम सशस्त्र बल में हैं, ना ही हम पुलिस में हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि हमें लगता है कि हम भी अपना छोटा सा योगदान अपने देश की सुरक्षा में दें।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि हर एक नागरिक की कोई ना कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, फिर चाहे वो देश के प्रति हो या खुद के प्रति हो या समाज के प्रति हो या फिर किसी पर्सन के प्रति हो।
1: बिल्कुल
0: है ना, हम आए दिन जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, नई नई बातचीतें सीखते हैं, बहुत कुछ अनुभव भी हमें सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उस तरह से हम लोगों का क्या एक नजरिया रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया या अगर हमें कुछ आसपास अपने देखने को मिल रही है कुछ गलत चीजें
1: जी,
0: तो हम क्या करते हैं, अक्सर आपने भी सुना होगा कि ये उनका काम है, ये उनकी कमियां हैं, वो संभाले, हमारा ये काम नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा रुचिका हमने, और हम यही बात सोच के कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम उस चीज को आगे सरका देते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने देश की सुरक्षा में, हमारे देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हम चूक कर जाते हैं। और देखिए, जब देश प्रेम का जज्बा जागता है ना, तो हम बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं, हमारे हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि अब हम दुश्मन को नाकों चने चबवा दें, उसकी हड्डी पसली एक कर दें। लेकिन जैसे ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सब तरफ शांति हो जाती है, तो हम अपने जो आंतरिक देश में हमारे चीजें चल रही होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाकर ही हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं रुचिका। मुझे लगता है कि अपने आसपास छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें, छोटी छोटी अपनी जो मन के अंदर जो हमारे ईगोज हैं उनको अगर हम दरकिनार कर दें, तो हमारे देश में शांति का माहौल बना रहेगा, सुरक्षा बलों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हम चाहें तो हम खुद भी, हम कानून की बात करते हैं कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अपने आसपास शांति बना रख सकते हैं। इन कानूनों का, छोटी छोटी बातों का पालन करके हम अपने देश के विकास में सहयोग दे सकते हैं और इसकी सुरक्षा को पुख्ता बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रुमा जी आपने, क्योंकि ये जो ईगो है ना, आपने कहा कि ईगो को हम साइड में रखकर थोड़ा सा समाज के बारे में, देश के बारे में सोचें, तो हो सकता है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, लेकिन हम क्या करते हैं, आपस में ही लड़ना जब शुरू कर देते हैं तो फिर उससे मुसीबतें और बढ़ जाती हैं।
1: वैसे भी अक्सर आपने सुना होगा रुचिका, जब हम कहते हैं कि हमारे घर में आपसी कला होती है, परिवार की हम बात अगर करें तो हमारे पड़ोसी उस कला का फायदा उठाते हैं, हमारे परिवार के सदस्यों को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। यही चीज बाहर जाके होती है, जब हम अपने घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना के रखते हैं तो पूरा मोहल्ले में किसी को भी हमारे घर से लेना देना नहीं होगा। हमारी जो घर की शांति है वो बनी रहती है। इसी तरह छोटी छोटी बातों को अगर हम गौर करें तो हम पूरे देश में शांति बना के रख सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा, आजकल का जो युवा वर्ग है वो काफी ज्यादा आक्रामकता उसमें आ गई है, सहनशीलता की बहुत कमी है, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, अपने परिवार में भी सही ढंग से नहीं रहते हैं, माता पिता को अक्सर डराते हैं। और इस तरह के कई मामले हमारे सामने आते हैं जब आजकल का युवा जो है वो माता पिता को अपनी भौतिक लालसाओं के चलते उनको परेशान कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि अक्सर हम छोटे छोटे से जो हमारे कदम मतलब होते हैं जिंदगी के लिए, देश के लिए, उससे हमें काफी हद तक जो है हेल्प होती है, हमें भी और बाकी लोगों को।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बोलते हैं ना कि एक के साथ एक जब हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो एक चेन बन जाती है, तो वही चेन हमें बनानी है, लेकिन हम आपस में ही उलझे रहते हैं।
1: बिल्कुल, और हमें आपस में उलझना नहीं है, और मुझे लगता है अपने दोस्तों को भी नहीं उलझाना है, ऐसे ना वो परेशान हो जाएं और कहीं और का रुख कर लें, तो क्यों ना पहले थोड़ा सा मनोरंजन की और ध्यान दिया जाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि गीत संगीत हमारे लिए एक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा और उससे हमारे दोस्तों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और गीत संगीत हमेशा से ही बहुत ही हमारा मनोबल बढ़ाने वाला रहा है, एक तरह से टॉनिक का काम करता है, तो क्यों ना अब जब थोड़ी सी सुस्ती छा रही है तो ये टॉनिक लेके हम थोड़ा सा अपने जोश को और बढ़ा लें।
0: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। तो रूमा जी क्यों ना आज आपकी पसंद का कोई गीत सुन लिया जाए।
1: तो बात कर रहे हैं रुचिका हम अपनी सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, तो एक नया दौर फिल्म का गाना है साथी हाथ बढ़ाना।
0: जी
1: तो आइए सुन लेते हैं वही गीत।
0: बिल्कुल, तो रूमा जी की फरमाइश में आप सभी दोस्तों के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: तो रुचिका जी, आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया है और मन अब सच में जोश से भर गया है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमारे दोस्त भी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अपने देश की तरक्की में, उसकी सुरक्षा में सहयोग करें। और चलिए अब हम भी सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में।
1: बिल्कुल, हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना रूमा जी कि जब औरों पे हम जो है कमियों की तरफ ध्यान देते हैं और खास करके हम उस समय अपने आप के बारे में भूल जाते हैं, तो वही बात है कि हम औरों की कमियों के बजाय
0: अगर हम
1: उनकी जो खुद पे भी और उनकी जो अच्छाइयां हैं, जिनसे कि हमारी भी हेल्प हो सके, समाज की हेल्प हो सके और जैसे कि हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, तो एक से एक मिलकर जब हम आगे बढ़ेंगे
0: बिल्कुल,
1: तो जरूर वो सुरक्षा जो है एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद रहेगी।
0: बिल्कुल, और देखिए बड़ी ही खुशी की बात हमें महसूस होती है जब हमने सुना कि आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारा देश है विश्व में अपनी तरक्की की और आगे बढ़ रहा है और उसने अभी जापान को भी पीछे छोड़ दिया है जो बहुत ही एक उन्नत राष्ट्र था, तो बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम उन्नति करते हैं और ये उन्नति हम सबके छोटे छोटे सहयोग से ही संभव है।
1: जी बिल्कुल, तो अब बात करते हैं रूमा जी कि ऐसे कौन कौन से हमारे वो छोटे छोटे से कदम हैं जिनको आगे बढ़ाकर हम अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका, ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब लोगों के मन में जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे सामने आर्मी या फिर एयरफोर्स या बाकी की जो भी हमारी सुरक्षा इकाइयां हैं वो ध्यान में आती हैं। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सहयोग से भी अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि आजकल आगजनी की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम जात पात की, संप्रदाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और ये सारी जो आंतरिक कला है इसका जो नुकसान है वो हमारे देश को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है और बाहरी जो हमारे शत्रु हैं वो इन छोटी छोटी चीजों का, आपसी द्वेष का जो लाभ उठाते हैं और हमारी सुरक्षा में भेद कर देते हैं वो, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को एक तरफ रखकर, जाति पाति से ऊपर उठकर, साथ ही साथ धर्म को एक तरफ रख के, एक मानवता के धर्म को अपनाते हुए अपने देश के सुरक्षा में हमें सहयोग देना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि हम जो है अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते, जैसे कि आपने अभी बात की कि हमें थोड़ा सा धर्म को साइड में रखकर, जाति पाति के भेदभाव को साइड में रखकर जो है अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, तो कुछ हद तक जो है हम अपना योगदान दे सकेंगे। लेकिन हम उसी छोटी सोच के चलते जो है घूम फिर कर उन्हीं बातों पे आ जाते हैं, उस भेदभाव का नजरिया जो है उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं।
0: और ये ही नजरिया जो हम जिन चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं यही हमारी सुरक्षा में भेद कर जाती हैं, यही चीजें हमें मुसीबत में डाल देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो देखो रुचिका, जब भी हम किसी गाँव की तरक्की की बात करते हैं तो गाँव में प्रधान के जिम्मे जब भी सारी चीजें आती हैं तो वो उस गाँव को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधान ही गाँव के विकास में मदद करेगा, वही करेगा, लेकिन हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है हमारे गांव में छोटी छोटी चीजों को, जैसे हम आपने देखा होगा हम भी रोज घर में साफ सफाई करती हैं, आप भी करती हैं, कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं पड़ोसी कहीं चला गया तो हम अपने घर का कूड़ा उसके पड़ोसी के आगे फेंक देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने घर का कचरा निकालेंगे, नालियों में भर देंगे और देखो उससे क्या होता है, ये अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी थोड़े टाइम में या कभी भी अचानक से बारिश आ जाती है तो वो नालियां उस कचरे की वजह से लबालब हो जाती हैं, फिर हम परेशान होते हैं, किसको कोसते हैं, हम गांव के प्रधान को कोसते हैं या फिर हम प्रशासन को कोसते हैं कि इन्होंने सही व्यवस्था नहीं रखी है, नालियों का निकास सही नहीं है, लेकिन गलती तो हमारी है। वो जो थोड़ी देर के लिए हमें समस्या सामने आती है उसका रीजन हम खुद हैं क्योंकि हमने खुद अपने घर की तो सफाई कर ली लेकिन अपने घर की गंदगी है जो कूड़ेदान में डालने की बजाय या जहाँ पर भी कूड़े के निस्तारण का प्रबंध किया गया है वहाँ फेंकने की बजाय हमने उसको अपने घर के बाहर या पड़ोसी के गेट के सामने, क्योंकि पड़ोसी रोज चिलचिल करता है हमारे सामने, उससे बदला लेने के लिए अपने घर का कूड़ा उसके आगे फेंक दिया। तो ये जो चीजें हैं ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। यही चीजें कल को जब भारी बरसात आएगी तो यही गंदा पानी हमारे घरों में घुसेगा और हम फिर भारी बरसात में छाता लेके उसको पानी को निकासी में लगे होते हैं, तो क्यों ना हम इस छोटे छोटे काम को शुरू से ही करें, कूड़े का प्रबंधन अच्छे से करें, अपने घर की गंदगी का प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो शायद ये चीज हमारे सामने नहीं आएगी और उस समय हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा।
1: बहुत ही सही बात कही है रूमा जी आपने, इस बात मुझे हंसी भी आ रही है एक तरह से, और मैं बोलूं तो, क्योंकि हम लोग सच में ऐसा करते हैं।
0: मुझे पता है आपको हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि आप भी कई बार शायद ऐसी परिस्थिति से जुड़े होंगे कि लड़ाई करती है और पड़ोसी ने कूड़े का पैकेट आपके घर
1: क्या करते हैं कि अब पता है कि लोगों को तकलीफ होती है, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, सूखा घास होता है वो यहाँ वहाँ हवा से चला होता है, तो लोगों को बोले कि नहीं इनको काट लीजिए, पर नहीं, वो पूरा सुबह से लेके शाम तक वो लगे हैं झाड़ू लगाने। और जैसे कि आपने कहा ना कि हम क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा निकालते हैं और दूसरों के घर में फेंक देते हैं, तो ये बात असल में ऐसे करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारे घर की सफाई हो गई है, हमारी नालियां साफ है। बरसात के मौसम की अगर हम बात करें, क्योंकि हर घर में जो है बरसात से पहले लोग सफाई करते हैं ताकि पानी जमा ना हो, सीलन ना आए, क्योंकि बरसात में सीलन की जो है वो दिक्कत रहती है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो क्या करेंगे, अपनी सफाई कर लेंगे और आगे का रहने देंगे कि नहीं इनका है, ये देखें जैसे भी है हमारी अपनी सफाई हो गई है।
0: बिल्कुल, अपने घर की सफाई हम कर लेते हैं जब हम कूड़ा वही कचरा नालियों में या कहीं फेंक देते हैं, तो अब बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी मच्छर की।
1: बिल्कुल,
0: कई जगह डेंगू, चिकनगुनिया, कई तरह की बीमारियां जो है बरसात में फैल जाती है, बदहजमी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पीने का पानी है वो भी उन्हीं नालियों के माध्यम से पाइप्स आती हैं और वहां पे वो कहीं अटक जाता है, तो हमारा पीने का पानी भी दूषित हो जाता है, जिससे मलेरिया, हैजा जैसी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हम यहां आके अपनी जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है उसको बाधित कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे कदमों को सही तरीके से उठाएं कि हमारा पड़ोसी को परेशान करने की वजह से हम उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन बदला क्या हो रहा है, हम खुद परेशान हो जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो हम भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: कहते हैं ना कि गड्ढा तो हम दूसरों के लिए खोदते हैं, पर अनजाने में हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर आपने अपने अभी गड्ढा खोदने की बात करी है, तो मेरा अपने दोस्तों से ये भी अनुरोध है कि अपने घर में छोटी सी जगह अगर आपके पास उपलब्ध है तो वहाँ पे ही आप एक गड्ढा खोदें और उसमें ही कूड़े का निस्तारण करें। कई जो किसान हैं वो इस तरह से कूड़े का निस्तारण करते हैं और घर का जो कचरा है, किचन का कचरा या कई, जैसे आपने कहा, पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं, तो उससे बहुत अच्छी खाद तैयार होती है।
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे खेतों की खुशहाली के लिए काम आती है, तो क्यों ना इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स हम सब मिलकर करें।
1: बिल्कुल, और ऐसे तो हम क्या करते हैं ना कि सभी को अब तो फैसिलिटीज घर बैठे मिल रही है। कूड़े कचरे की हम बात करें तो घर घर पे कूड़ा कचरा उठाने की जो है एक तरह से सुविधा लोगों को दी जा रही है, लेकिन लोगों को वहाँ भी दिक्कत है कि वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: सुविधा भी चाहिए है, लेकिन
0: वही उसी का हल है ना रुचिका, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो अपने ही घर में एक छोटा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसमें आप जो भी कचरा है घर का उसको उसी में उसका प्रबंधन कीजिए।
1: और कुछ तौर पे हम क्या करते हैं कि घरों का जो सामान है, जो भी मतलब कि फटे पुराने कपड़े हैं या प्लास्टिक के लिफाफे हैं, जो भी हमारे मतलब यूज हो चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं और कहीं पे जैसे कोई डस्टबिन बने हुए हैं तो वहाँ पे फेंक देते, वो भर भी गए होते तो हम आसपास पे वो फेंक रहे होते हैं।
0: बिल्कुल, और जब साथ में जब नदी नाले उफान पे होते हैं वो तो हमने देखा है कि कई जगह वो पुराने कपड़े प्लास्टिक के लिफाफे
1: जाते हैं
0: जो पानी के बहाव को रोकते हैं। और आप देखिए कि यही आजकल के समय में इतना हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं कहीं पे पहाड़ियां गिर रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और इसका रीजन भी काफी हद तक ये है, एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट ही चाहते हैं लेकिन हम विकास तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम जो हमारे अंतर मन में जो चीजें चल रही होती हैं उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने मन में जो छोटे छोटे द्वेष लेके बैठे हैं उनको हम छोड़ते नहीं है, और जब इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर बरसात का पानी जो है वो उफान पे आएगा और हमारे घरों में ही आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपने घर के कूड़े का प्रबंधन सही से करें और अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाएं, क्योंकि बाल मन जो होता है उस पे जो प्रभाव होता है वो लंबी उम्र तक रहता है। जब हम छोटे बच्चों को ही उनको सही जगह से टॉफी का या छिलका, किसी फल फ्रूट का छिलका सही जगह फेंकने की हम सीख देते हैं, तो बच्चे इस चीज को लंबे समय तक ग्रहण करते हैं और औरों को भी ये चीजें सिखाते हैं। और मैंने अक्सर कई बच्चों को ऐसे देखा है कि मैं कभी बस में ट्रैवल कर रही थी तो एक माँ ने अपने बच्चे को कुरकुरे का पैकेट दिया, उस बच्चे ने खाया तो माँ उसको बाहर फेंकने लगी थी, लेकिन उस बच्चे ने स्कूल के उसके टीचर ने उसको बताया था कि ऐसे सड़क पे नहीं फेंकना है, तो उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था 3 या 4 साल का, तो उसने अपनी माँ का हाथ रोका, मम्मा ऐसे नहीं फेंकना है, इससे सड़क में गंदगी हो जाएगी। तो देखिए, एक छोटा बच्चा हमें सिखा सकता है, तो ये सीख हमें ले लेनी चाहिए और हम सबको अब मुझे लगता है कि एक और ब्रेक भी लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसे कि आपने अभी बच्चे की बात की ना कि छोटे से बच्चे से हमें सीख ले लेनी चाहिए, तो आपने शुरुआत में बात की थी कि कहीं ना कहीं हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर भी हमारी ईगो हर्ट हो जाती है क्योंकि एक छोटे से बच्चे से हम कैसे सीख सकते हैं, हमने तो जिंदगी गुजार दी।
0: बिल्कुल, लेकिन देखिए शिक्षक कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है वो हमें सही शिक्षा दे सकता है, और जहाँ से हमें सही शिक्षा सही ज्ञान मिले वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, और फिलहाल हमें एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत।

0: 291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: मेरी हौसलों की उड़ान
0: अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। तो आइए मिलकर इस सफर को बढ़ाते हैं आगे और अपनी बातचीत को भी थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलते हैं और आप सभी को जानकारी की ओर, क्योंकि आज बहुत ही खास बातचीत हम कर रहे हैं कि हमारा ऐसा कौन कौन से छोटे छोटे से कदम है जिससे कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे सके। योगदान की बात आती है तो सिर्फ ये बातों में ही रह जाती है बातें, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा दायित्व है उसको निभाने की बात करें तो हम पीछे हट जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: नजरअंदाज करते हैं।
1: ऐसे लगता है मुझे, मेरा ये मानना है रुचिका कि हम छोटा छोटा सहयोग करके एक दूसरे का, सभी को हम सहायता कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता कर सकते हैं। और आजकल के जो, अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो हमारा जो आजकल का यूथ है उसमें बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है, कुछ भी अपने राष्ट्र के लिए कर गुजरने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो मेरी अपने यूथ से, युवा भाइयों से, दोस्तों से ये अनुरोध है कि गाड़ी थोड़ी लिमिट में चलाएं, जगह जगह स्पीड लिमिट होती है और जब हम सड़क पे चलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सड़क पे कोई और भी चल रहा है, वहाँ पे पैदल चलने वाले भी हैं, वहाँ पे और गाड़ियाँ भी हैं। गलत जगह से ओवरटेक ना करें, जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, अगर चौपहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलाएं, और नशे की हालत में तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि नशे की आदत मौत की दावत, ये तो हमने सब जगह स्लोगन सुने हैं। तो इस तरह की अगर आप दावत नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि जो पुलिस वालों की एक जो काम होता है, और जब भी आपने देखा कि कहीं रोड एक्सीडेंट किसी भी वजह से हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और हमने हमारी आंखों के सामने कई युवकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए देखा है, और अपनी जान को तो उन्होंने जोखिम में डाला ही है, साथ ही साथ राहगीरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो यूथ अगर इस चीज की ओर ध्यान दें, नशे की आदतों से अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है आपका राष्ट्र के निर्माण में।
0: बिल्कुल, और आपने बात कही उसी से मैं बात एक कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा ना कि सड़क सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, जैसे कि गाड़ियां चलाते हैं तो बिना लिमिट के, बिना कुछ देखे सुने हम खुद को तो जोखिम पहुंचाते ही है, साथ में हम परिवार को भी परेशानी में डालते हैं और लोगों को जो कि सड़क में बेचारे आराम से जा रहे होते हैं उनको भी हम परेशानी में डालते हैं।
1: बिल्कुल, और रुचिका एक चीज और भी है इसमें, जैसे आजकल के यंग्स ने अपनी गाड़ियों में एक अलग तरह का साउंड सिस्टम लगाया होता है, जब वो चलते हैं तो बाइक्स पे बहुत ज्यादा पटाखे जैसी आवाज आती है, काफी शोर करता है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और हमारे जो कई सड़क के किनारे जिनके घर हैं, कई बुजुर्ग लोग रहते हैं, कोई बीमार है, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। और आपने वैसे भी सुना है कि एक लिमिट तक ही अगर हम आवाज सुने तो हमारी श्रवण शक्ति जो है वो सही रहती है, लेकिन उससे ऊपर अगर हम कुछ भी सुनेंगे तो हमारे सुनने की क्षमता पे भी फर्क

0: पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा ही नहीं उन नौजवानों के लिए भी नुकसानदायक है जब हम तेज आवाज के साथ लाउड म्यूजिक के साथ या कहीं भी एकदम से बहुत तेजी से कहीं से गुजरते हैं तो अपने आप को भी हम जोखिम में डालते हैं और साथ ही साथ हम पर्यावरण प्रदूषण भी कर रहे हैं क्योंकि आजकल के समय में ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती हो गया है हमारे लिए क्योंकि जब तक ध्वनि प्रदूषण को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे लोगों को आज सुनने की समस्या का कारण एक ये भी है।
1: बिल्कुल, और हम जब भी मैंने पहले ही कहा था कि हम दूसरों की कमियां गिनाने में बहुत आगे होते हैं तो अब सड़क सुरक्षा की हम बात करें तो जब भी एक्सीडेंट की बात सुनते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये प्रशासन की तरफ से रोड ठीक नहीं है या यहाँ पे ये कमी रह गई है वहाँ पे ये कमी रह गई। लेकिन मजाल है कभी किसी को ये बोलते हुए सुना हो कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने नशा करके अगर मैं ड्राइव कर रहा था उस वजह से मेरे को, या मैं ईयरफोन्स कान में लगाए हुए थे, मैं गाने सुन रहा था उस वजह से ऐसा हो गया, या फिर मैंने हेलमेट नहीं पहना था, या मेरा ध्यान नहीं था, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस रोड पे लगी थी वो मैंने नहीं फॉलो की, ये कभी किसी ने नहीं बोला होगा।
0: बिल्कुल, लेकिन रुचिका जो बातें ऐसी करते हैं युवा हमारे
1: जी,
0: उनके लिए तो एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हमारा वाहन का लाइसेंस बनता है या जब भी हम किसी वाहन का प्रशिक्षण लेते हैं तो उसी दौरान जो वाहन प्रशिक्षण प्रदाता होते हैं वो उनको रोड सेफ्टी के रूल बताते हैं और आपको भी पता है कि जब भी लाइसेंस लिया जाता है तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट से पहले भी एक टेस्ट होता है जिसमें युवाओं से या हमसे, जैसे मैं भी गई हूँ, तो ये पूछा जाता है कि आपको रोड के नियम पता है, रोड सेफ्टी के रूल्स पता है या नहीं है। तो ये सारी चीजें युवाओं को पहले से पता होती है लेकिन वो जानबूझकर
1: भी, रुमा जी, और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से युवा 18 साल से पहले ही व्हीकल्स जो है पेरेंट्स उनके हाथों में थमा देते हैं
0: और ये तो हमारी पेरेंट्स की ही गलती है।
1: तो कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो युवावस्था होती है यहाँ पे एक जोश भरा होता है हमारे अंदर, हम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पा लेना चाहते हैं, कर लेना चाहते हैं, हमें लगता है कि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसी सोच की वजह से युवक जो हैं वो ना तो सड़क पे आके स्पीड को कंट्रोल करते हैं ना ही वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताएं, उनको इसके नफा नुकसान जो भी है वो हम समझाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी युवक की, और आपने देखा होगा आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं जहां पे 18 साल के 19 साल के युवा जो हैं वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर असमय मृत्यु को गले से लगा ले रहे हैं। तो ये चीज जो है वो हम बड़ों को ही समझनी पड़ेगी और गाँव के जो मुखिया है, हमने एक बार शायद पहले भी किसी कार्यक्रम में अपने दोस्तों से बात की थी कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा इस तरह से गाड़ी चला रहा है तो प्लीज उसको समझाएं, वो नहीं समझता है तो उसके पेरेंट्स को समझाएं, अगर पेरेंट्स भी उसकी बात नहीं समझते हैं तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं क्योंकि आजकल ओवर स्पीड पे भी चलान होता है विदाउट लाइसेंस। और देखिए आपने देखा होगा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, कहीं पुलिस वाला चलान काटने के खड़ा है तो हम रुक जाते हैं क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहना है तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास तो काफी वैसा है,
1: वो
0: कुछ भी कर लेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन हम तो बच जाएंगे लेकिन जो मानसिक शांति जो हमारी खराब होती है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है क्योंकि मानसिक तनाव कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो आप खुद भी इस चीज से बचें और अपने बच्चों को समय से पहले, जब तक लाइसेंस उनका नहीं बन जाता है, और क्या जब हम लाइसेंस बना भी लेते हैं वहाँ भी डर के मारे कैसे भी किसी ना किसी तरह हम लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 दिन तक लगातार बच्चे जो है वो गाड़ियाँ चलाना सीखते रहते हैं और उनको वो पता होता है ऐसे ऐसे उनका ट्रैक है तो उस ट्रैक को कैसे चलना है, कैसे पार करना है वो कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से उनको भी ड्राइविंग स्किल उनकी जो है इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि वो मेन रोड पे अच्छे से वो कर पाए क्योंकि आजकल का युवा बहुत ही, मैंने कहा कि सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो उनको ये पता रहता है, वो पहले ही पता कर लेते हैं ड्राइविंग टेस्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ पे उन्होंने किस तरह के वो निशान बना रखे हैं, कहाँ से गाड़ी ले जानी है, तो इस तरह की वो स्किल सीख लेते हैं अपने दोस्तों के सहारे या कैसे भी, और लाइसेंस तो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो रोड पे जब आते हैं तो उनको जब लगता है कि लाइसेंस मिल गया अब तो मैं कुछ भी करने के लिए फ्री हूँ फिर उनके हाथ में जो स्पीडोमीटर होता है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता है।
1: पर अब तो खैर जो है जगह जगह पे कैमराज जो है वो लगे हुए हैं अंडर सीसीटीवी जो है, हर लोग मतलब कोई भी अगर फोन पे चलते चलते बात भी कर रहे हैं तो भी चलान कर सकता है, क्योंकि
0: चलान फंस जाते हैं। लेकिन युवा इस चीज को नहीं समझते है ना, उनको पता है कि अगर चलान हो भी गया तो हमारे माता पिता
1: संभाल लेंगे।
0: और यही चीज माता पिता को संभालनी है कि अपने बच्चों को ये चीज जरूर सिखाएं।
1: बिल्कुल, जो हमारे लिए जरूरी है चीजें, क्योंकि ये जो रूल्स हैं, जो भी सड़क सुरक्षा नियम है चाहे कोई भी सुरक्षा नियम है, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें प्रशासन का कोई फायदा है या तो किसी और का कोई फायदा है। ये अगर हमारे लिए बने हैं, हेलमेट पहन के हम निकलेंगे तो कहीं अगर इनकेस गलती से बाइक स्किड कर गई तो हो सकता है कि सिर पे चोट लगने से हम ही बचेंगे, कोई प्रशासन थोड़ी ना बचेगा।
0: बिल्कुल, और ये सारी चीजें जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है
1: जी।
0: और अगर हम इन सुरक्षा नियमों का पालन करें तो हमारे लिए ही इसका फायदा है।
1: बिल्कुल, और आजकल रूमा जी आप ये भी बहुत सी चीजें देख रहे होंगे कि युवाओं की ही बात कर रहे हैं तो खैर वही हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आजकल आए दिन आप ये देख रहे हैं कि युवा किस तरह से नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये न्यूज भी हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग सी है कि जो समय बच्चों की पढ़ाई के लिए है, जो कि उन्हें आज को बेहतर बनाने के लिए है, वो अपने आज को खराब करते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और नशा जो है वो हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है
1: जी।
0: हमने कई घरों को उजड़ते देखा है, कई माता पिता को हमने एड़ियां घिसते देखा है कि हमारे बच्चों को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब सर से पानी ऊपर उतर जाता है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो हमारे युवाओं से अनुरोध कि नशे से दूरी बना के रखें, क्योंकि नशा जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारे बाहरी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हमारी आंतरिक जड़ों को खोखला कर रहा है। तो युवा साथियों, आपसे यही अनुरोध रहेगा कि नशे से दूरी बना के रखें। नशा करना है किताबों का कीजिए, संगीत का कीजिए, अपने अंदर आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपने देख रखे हैं, आपको जो अपने सामने एक स्थापित होते देखना चाहते हैं सफल व्यक्ति के रूप में, आप अपने माता पिता के सपनों का नशा कीजिए, उनको पूरा करने के लिए जोश लगा दीजिए, क्योंकि यही उम्र है जिसमें आप आगे बढ़कर अपने देश के निर्माण में बहुत ही अधिक सहयोग दे सकते हैं। और अगर आपके आसपास आपके दोस्त या अन्य भी कोई नशे की ओर उसका झुकाव है तो उनको रोकिए, इसके दुष्प्रभावों के बारे में उनको अवगत करवाओ।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने, क्योंकि हम क्या करते हैं कि शौक और एक्साइटमेंट के चलते जो है चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, ना लोगों को पहचान पाते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है, तो उसी के चलते हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब पता चलता है, और खासकर कि आपने पेरेंट्स की बात की ना, कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे किसी न किसी तरीके से इस चीज से बाहर निकलें, लेकिन जब उनके हाथ में समय होता है उन्हें संभालने का, उन्हें एक सही दिशा देने का, तब वो बिजी हैं अपनी लाइफ में पैसे कमाने के चक्कर में।
0: बिल्कुल, पैसे भी कमाइए, हम नहीं कहते कि पैसों के लिए मत भागिए, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में पैसा भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे बच्चे, और हमें अपने देश की सुरक्षा में अगर कहीं भी कोई सहयोग देना है तो सबसे पहले अपने परिवार को ही सुरक्षित रखना है। अगर मेरा परिवार सुरक्षित है तो मेरा आस पड़ोस भी सुरक्षित है, मेरा गांव भी सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, और ये देश भी सुरक्षित है।
1: जी बिल्कुल, और फिलहाल हमें कार्यक्रम को भी सुरक्षित रखना है एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। आप सभी इसी तरह से इंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: तो दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मेरे हौसलों की उड़ान अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ
0: जी। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि अपने देश की सुरक्षा में हम अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं। तो रूमा जी क्यों ना अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाया जाए, और अक्सर हम देखते हैं कि हम आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बात को लेकर, तो आपको क्या लगता है उन बातों से निकलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं?
1: रुचिका अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले तो शांति हमारे ही जीवन में आएगी, और जब हम शांत रहेंगे तो हम छोटी छोटी चीजों को तूल नहीं देंगे, हमारे परिवार जो है वो एक शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, जैसे हम अपने देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो आजकल क्या होता है कि जब भी कोई बात हो जाती है, हमने पहले भी कहा धर्म के नाम पे दंगे भड़क जाते हैं, जाति पाति के नाम पे विवाद हो जाते हैं, छोटी छोटी हमारे गाँव की छोटी छोटी जो भी जमीन के टुकड़े हैं उनके लिए हम एक एक इंच के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इसी के छोटे छोटे झगड़ों के वजह से कई बार हम गलत चीजों को अंजाम दे देते हैं, आगजनी जैसी घटनाएं हो जाती हैं, हम तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे लोग रेलगाड़ियों को जला रहे थे, उनपे तोड़फोड़ कर रहे थे, कहीं आगजनी हो जाती है तो पेट्रोल पंप को आग लगा देंगे या बसों को आग लगा देंगे। सरकारी तंत्र को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान हमारा अपना होता है क्योंकि जो भी सरकारी तंत्र हमारा विकास होता है वो हमारे ही पैसे से होता है। और देखिए जब भी छोटा बच्चा भी आपने सुना होगा पैदा होता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। हम छोटा छोटा छोटे बच्चे के लिए आप देखिए चाहे वो डायपर ही खरीद रहे हैं उसमें भी GST दे रहे हैं हम, तो ये हमारी ही जेब से जा रहा है और उसी से हमारे देश का विकास हो रहा है। चाहे वो परिवहन सुविधा हो, सड़क सुविधा हो, या फिर कोई भी हमें सुविधा जो भी सरकार तेरी है, अगर हम वहाँ तोड़फोड़ करते हैं तो हम जाने अनजाने खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन चीजों से दूर रहेंगे, परहेज करेंगे तो हम अपने इस योगदान को पुख्ता कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं, आपने ये बात कही कि सरकारी संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाते हैं, आंखें बंद करके पहुंचाते हैं, क्योंकि जब हमारे पैसों से चीजें आई होती है तो उनको तो हम बहुत सहेज कर रखते हैं, बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से, लेकिन जैसे ही हमें फ्री में मिल जाए या जैसे भी हो तो उनकी हम केयर नहीं करते हैं, तोड़ फोड़ या ऐसे ही यहाँ वहाँ फेंक के रखते हैं। बड़े अगर वैसे करेंगे, बड़े ही ऐसी लापरवाहियां दिखाएंगे तो बच्चों पर भी वही असर पड़ेगा, और बच्चे भी उन चीजों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे और वो भी आगे चलकर वैसा ही बिहेवियर शो करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा रुचिका, एक और चीज, हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज क्या है, अपराध को जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कई लोग क्या करते हैं कि हमारे सामने अपराध हो रहा होता है और हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा सहयोग जो है, देखिए एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आगजनी की घटना को अंजाम दे देती है। तो अगर आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति असहज है, चाहे वो पारिवारिक हिंसा है या कोई भी किसी भी प्रकार का जमीनी विवाद है, किसी भी वजह से किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कीजिए, आप पुलिस को रिपोर्टिंग कीजिए, आपके पास जो भी आपको लगता है सुरक्षा पहुंचा सकता है आप उन सुरक्षा एजेंसियों से अपनी पहुंच बनाएं, ताकि जब तक रिपोर्टिंग किसी भी अपराध की नहीं होगी अपराधों का स्तर नहीं गिर सकता है। और देखिए आए दिन आजकल औरतों के साथ कई तरह की असहज दुर्घटनाएं हो रही हैं, यौन अपराध बढ़ चुके हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है वो रेप जैसी गंभीर समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। और अभी हाल ही हमारे सामने एक मुद्दा आया था जहाँ पे घर पे भी हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। और देखिए ज्यादातर जो पॉक्सो एक्ट, हमने उसके बारे में भी कई बार चर्चा करी थी, तो आपने देखा होगा कि 3 साल से लेके 16 साल की लड़कियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है अपने घरों में, इवन लड़कियों की बजाय लड़कों के साथ भी इस तरह के गंभीर अपराध हो रहे हैं और कई तरह के केसेस हमारे सामने इस तरह के आते हैं, तो जहाँ पे हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और आप देखो जब किसी छोटे बच्चे के साथ इस तरह का अपराध हो जाता है तो उस बच्चे के जीवन में उम्र भर के लिए जो एक ट्रॉमा बैठ जाता है वो नहीं निकल पाता है। तो इन सब चीजों से हमें अपने बच्चों को जरूर अवेयर करना है, उनको जरूर बताना है कि उनको अच्छे बुरे की समझ हो, उनको सही दृष्टि क्या है, गलत दृष्टि क्या है, उसकी एक सोच समझ माताओं को, पिता को, अपने घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अपने बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चों के साथ अपराध रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर मामले जो हैं वो पारिवारिक सदस्यों ने किए हैं। और हाल ही में हमारे सामने मुद्दा आया था कि एक छोटी 7 साल की बच्ची के साथ उसके दादा ने ही रेप किया। तो अपने घर में भी हम सुरक्षित नहीं है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अपनी बच्चियों को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, शुरू से उनको गुड टच बैड टच के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमें बहुत ही अधिक मानसिक आघात देती हैं। और ये चीजें जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा की बात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें मिलजुल के एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके सुलझानी होंगी, इनके समाधान भी हम लोगों को ढूंढने होंगे। और एक चीज और रुचिका मैं बोलूंगी, मैंने पहले भी कहा कि रिपोर्टिंग होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे केस हमारे जो परिवारों में हमारी संस्कृति का हवाला देके या परिवार की इज्जत का हवाला देकर उनको दबा दिया जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां लड़कियां परिवार में ही रहकर यौन अपराधों का शिकार हो रही हैं, और अपराध इसलिए वो रिपोर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उनके परिवार की साख जो है वो लोगों के सामने आएगी तो परिवार की इज्जत जो है वो चली जाएगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है उसके जीवन पर क्या असर हो रहा है, और आने वाले समय में वो बच्ची या जो भी लड़का जिसके साथ भी ये गलत हो रहा है वो उसके मन में अपने आप ही हिंसा के गुण उत्पन्न होंगे, वो दूसरों के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों को हमें खुद ही ध्यान रखना होगा और इन चीजों से बचने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और अपने बच्चों को सही और गलत की जानकारी हमें जरूर देनी चाहिए। और छोटी

0: से ही हमें सोचना होगा कि ये चीज हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कोई दुर्घटना ना हो जाए।
1: बिल्कुल, और इन सब चीजों के लिए जैसे कि आपने कहा कि अपराध जब हमारे सामने हो रहा होता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कौन इन पचड़ों में पड़े, क्योंकि अगर हम फंस गए तो फिर हमें भी इनके साथ जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उन सब बातों से हम डर जाते हैं। तो इस सब के लिए जरूरी है हमारे अंदर मानवता होना।
0: बिल्कुल,
1: जो मानवता अगर हमारे अंदर नहीं है तभी तो ये, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चियां घर पे ही सेफ नहीं है, क्योंकि इंसानियत हमें नहीं बची है। आज का इंसान जो है एक तरह से हैवान बन चुका है, उसी के चलते ये असुरक्षा जो है हमें घर पर ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए और उसे बाहर निकाल कर लेकर आइए, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको वही काम आएगी।
0: बिल्कुल, जरूर ही नहीं है कि हम सभी बंदूक उठाकर ही अपनी सरहदों की रक्षा करें, हम अपने घर में रहकर अपने रीति रिवाज, संस्कृति और अपने सुदृढ़ विचारों के साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। इन चीजों से अगर हम अपने आप को महफूज रखेंगे तो हम अपने आप ही अपने देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अब समय हो गया है अपने दोस्तों से विदा लेने का। तो दोस्तों बहुत ही खास बातचीत कि अपने देश की सुरक्षा में अपना योगदान कैसे दें, तो हमने आप सभी से बहुत ही एक कहते हैं कि गंभीरता वाली बातचीत की है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम आपस में लड़ते रहेंगे तो वो अकेलापन सा, हर कोई अकेलेपन में रहना आजकल पसंद कर रहा है, तो उससे तो हम एकजुट होने से रहे, आपस में ही हम लड़ते रहेंगे तो देश के लिए कब लड़ेंगे। तो इसलिए हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा, आपस में एकजुटता को बनाना है, उस प्यार को बनाना है, और वो तब बनेगी जब आप अपनी जो है एक तरह से वो ईमानदारी, वो सहनशीलता, वो अपनापन अपने अंदर से जगाएंगे, अपनी इंसानियत को अंदर से जगाएंगे। तो वो उम्मीद है हमारी आप सभी से कि आप जरूर इस बात पे ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि ये छोटे छोटे से प्रयास हैं हमारे, छोटे छोटे से कदम हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको एक सही दिशा देने की ओर जो है हमारे एक तरह से अग्रसर है। तो इसी उम्मीद के साथ रूमा जी, मुझे लगता है कि अब अपने दोस्तों से अलविदा हमें कह देना चाहिए।
0: बिल्कुल, अलविदा कहेंगे भी और फिर से एक बार अपने दोस्तों से हम अनुरोध करेंगे कि अपने छोटे छोटे प्रयास कीजिए जो हमारे अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नशे से दूर रखिए बच्चों को, अगर कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, साथ ही साथ अपने बच्चों को अगर वाहन चलाने को देना है तो उसके लिए भी पहले सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे इसके लिए सक्षम हो गए हैं या नहीं, और साथ ही साथ सरकारी तंत्र में जो भी हमें संपत्तियां मिली हैं वो सब संपत्तियां हमारी हैं, हमारे ही द्वारा अदा किए गए कर से उनका निर्माण हुआ है, तो उनकी तोड़फोड़ इन चीजों से दूर रहें।
1: जी, तो जाते जाते हम अपना नंबर बता देते हैं अपने दोस्तों को, जिससे कि अगर उनके मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव अगर वो देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9418431223। आप कभी भी कोई भी विचार आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप SMS कीजिए, WhatsApp कीजिए या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, तो आप दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: रूमा को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपनेपन की।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट
1: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट
2: टेस्टिंग
3: टेस्ट
2: टेस्ट
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तो आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
10: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला के नाल तुसी बने हुए हो तो सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हाँ थोड़ी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: टेस्टिंग
3: टेस्ट
1: टेस्ट
2: टेस्ट।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी।
10: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
11: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी गूंज कन्ने मैं शशि कार्यक्रम लेकर ही माटी दी मेह कार्यक्रम लेकर तुहां तक हाजिर हुई हो है। कन्ने तुहां सारे भी इसी गूंज कन्ने जिड़े से जुड़ी होने न, क्योंकि ये जिड़ा गूंज है से तुहां तक पुजदी है। कन्ने तुहां सारे भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफ़र जो जरूर जिड़े से इंजॉय करते न, कने सफ़र तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कशो तुम कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जिड़ा हांदा नंबर है से तुहां तक पहुँचाईंदे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। नंबर है 701-811-7091। ते नंबर तुहां तक पहुँचाई तय करें तो हाँ सारियां भी ये नंबर जिहड़े से नोट करी ले आना है। तो ज़रूर इसी कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज़ है सभी कन्ने फ्री जिहड़ा बाकी दियां गल्लां न से तुहां तक पहुँचानियां ने। कन्ने अज कने दिनें दी गल करिए तो 31 जुलाई 2026 था ए दिन है। कन्ने महीने दा लास्ट दिन बोली सकते हाँ। कन्ने हर दिन जिहड़ा इस यहाँ वास्ते खास होंदा, कन्ने हर दिनें दी अपनी अपनी जिहड़ा खासियत है से जरूर होंदी है।

ज़रूर इसी खासियत कन्नै अस अपने कार्यक्रम दा जेह्ड़ा आगाज़ है से कन्नै इक प्यारे दे गीत कन्नै तुसां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर शाह कन्नै जुड़ी सकदे। तो श्रोताओं करदे न अपने कार्यक्रम दा आगाज़ इस प्यारे दे गीत कन्नै, तुसां सारे भी इंजॉय करा कन्नै सुनदे रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। इसी शुरुआत कन्ने अहां दे पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या हाल चाल है
0: जी? हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां दसा तुहां ठीक है न?
1: हां जी ठीक है जी।
0: जी तो अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
1: जी मैं कांगड़े से बोल रही।
0: जी कांगड़े वाले भी जागी पे ना जी?
1: हाँ जी
0: जी जी जी। तो क्या हाल चाल है जी कांगड़े वाले दे?
1: बस बढ़िया जी, बाहर सोने वाली है
0: जी। अच्छा बरखा है तो हम बुलावा दे ही है ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, देना भी जरूरी है ना जी, बरसात है।
1: हाँ जी बरसात लगी है ना जी।
0: जी जी जी। ता और नोई ताजी?
1: बस जी सब बढ़िया है।
0: कांगड़े दी कोई नोई ताजी?
1: बस जी कांगड़े दी कोई नोई ताजी, बरसात भी जा रही है, गर्मी शुरू हुई यार जी।
0: जी जी
1: गर्मी बड़ी ज्यादा।
0: जी गर्मी दा एहसास भी ज्यादा होता ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता तो है क्या लगा था मौसम च कुछ बदलाव है?
1: मौसम से सही बड़ा भारी बदलाव हो गया।
0: बड़ा बदलाव हुई है।
1: हाँ जी
0: तो तुम्हें क्या लगता क्या कारण है कि मौसम से इतना ज्यादा बदलाव दिखने मिला था?
1: ये कारण तो हरे हुण पेड़ पहाड़ कटी पे सारे पसियां तो सीन से ही बदलाव है ज्यादा की।
0: जी जी जी जरूर तुहां सही बोला दे कि पेड़ जिहड़ा न से ज़्यादातर हाँ हर जगह दिखा दे न कि अपना फायदा दिखने दे चक्कर जहाँ कुछ ना कुछ खुद जो नुकसान भी दे देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी कना अपने आस पास दिखते न या जेड़ा चलने वाले रस्ते न सभी कुछ ना कुछ बंद करी थे ना जी लगभग, क्योंकि फोर लाइन निकला दी तो जेड़ा शॉर्टकट रस्ते न तिना जो भी यहाँ दिखते न तो कुछ ना कुछ सभी बंद आ न या अपने आस पास यहाँ कुछ दिखते न बोर्डिंगा न या कुछ भी है, फोर लाइन की वजह ने बड़ा ज़्यादा जेड़ा नुकसान है इसे कुछ ना कुछ यहाँ दिखने जो मिल रहा था। ठीक है फायदा भी है पर कुछ ना कुछ नुकसान भी है। हाँ जो
1: हाँ जी फायदा तो घट है पर नुकसान ज्यादा है।
0: जी जी तो हाँ नुकसान तो मतलब ज़्यादा नुकसान है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी शाहपुर च भी जेड़ा होया था पिछे दिया बरखा हुई थी दी वजह ने बड़ा हादसा होया था ना जी।
1: हाँ जी बदल फटे तो बड़ा नुकसान होया।
0: जी जी बड़ा ज्यादा नुकसान होया।
1: हाँ जी
0: जी ता आज तुम कुंदिया गीत सुनना पसंद करेगी जी?
1: आज तो सुनाई दे निक्की जी ने गोजरी
0: मुझे लगा था आज तो हाँ फ्राटी लगाई लेनी है ना जी।
1: आज फ्राटी लाने दिल कितने हैं
0: जी सच्ची कितने कि नहीं कितने हैं?
1: ना ना कितने कितने
0: ता तो अच्छी गल है जी। थोड़ा दिया सेहत वास्ते ना डांस करना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी जरूरी है जी।
0: खुश रहना तो कुछ ना कुछ करना चाहिएगा क्योंकि जिंदगी तो छोटी दे ही है पर हाँ किस तरीके ने अपनी जिंदगी जो इंजॉय कर दे ना से यहाँ पर निर्भर करता है ना जी।
1: और क्या छोटी दे जिंदगी है उसे हंसी पाए के निकाल है ना।
0: जी जी जरूर जी। जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी
0: जी। तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? तो जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो कुछ ते बोला दे कने तो हंदा ना क्या है जी?
2: हम दाढ़ी ते बोला दे कने ना मैं एक ना था
0: जी। ता दाढ़ी ते बोला दे तो इस टाइम दाढ़ी दा मौसम क्या बोला था कने क्या काम कार तो हाँ छेड़िया?
2: काम कार कुछ नहीं था, उस जगह बरखा चुकी है
0: जी। अच्छा उन बरखा रुकी है तो हाँ कोई ना कोई प्लान सोचा दे होने की कुंड दिया काम उन करिए ना जी।
2: काम क्या करना था रोटियां खा रही है ना सो ही अंदर जरा की और ना उठवाड़ा प्रोग्राम होगा कि रहा इसमें सुन लेते।
0: जी जी जरूर जी।
2: हां थोड़े पाए बरखा हो रही थी।
0: जी जी बरखा तो होती जी
2: और थोड़े पाए भी।
0: हां जी हां जी होती बरखा।
2: चलो ता ठीक है।
0: जी तो मेघना जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
2: आज हाँ जी वो भजन सुनना राम नाम की क्यारी,
0: पसंद करके।
2: आज हाँ जी वो भजन सुनना राम नाम की क्यारी, बीज ले छोड़ दे पापा वाले के क्यारी।
0: जी राम नाम दी क्यारी।
2: हाँ जी
0: जी जरूर, ये भजन तो वहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी दर्शकों, तो सारे जो लेकर चलते ना इस प्यारी दिया फरमाइशा दी, और तुहंदा मन करा दे कि तुह फराटी लगाइए तो जरूर लगा, कने थोड़ा दिया हम भी फराटी जड़े से लगाई लेंदे ना।

0: दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दे आ गीत प्यारी दे फरमाइश जरूर ये फरमाइश हाँ पवना जी तक पहुँचाई कने से रहने वाले न कांगड़े ते इसी कने हाँ फिरी ते वापिस आई उन तो तक गलबात करना दर्शकों मौसम की गल करिए जड़ा 31 जुलाई का मौसम धर्मशाला का जड़ा मौसम है इसे कुथी ना कुथी बारिश आला रहने वाला है या गर्ज कने बुछारे गिरने की जड़ा संभावना से जरूर है तो हम मौसम की ओर नज़र दौड़ा दे उन्हें तो जरूर कुथी ना कुथी बरखाला मौसम है कने लगने भी तैयार है कुथी कुथी इसी कने तापमान की गल करिए आज कना जड़ा अधिकतम तापमान है से 3 डिग्री सेल्सियस है कने जड़ा न्यूनतम तापमान है से 17 डिग्री रहने के आसपास जड़ा 17 डिग्री जड़ा इसे आस पास रहना है। बारिश की संभावना जड़े से दिने दी यानी कि दोपहर की गल करिए संभावना लगभग जड़ा इसे 60% है कने या जड़ा शामी की गल करिए बारिश दिया जड़ा बुहार हैं सह पी सकदियां हैं तो जरूर ये जानकारी तुह तक पहुँचाई है कने तुह सारे ही मौसम के अनुसार अपना जड़ा काम है से करा देने न क्योंकि मौसम के अनुसार ही आंदे जड़ा काम मन से चलते न कने अपना जड़ा ख्याल है से यहाँ रखते न कई बार हाँ गलबात करते न मेहनत पर कि मेहनत का जड़ा फल लेना उसे हमेशा मीठा होंदा पर अज कने दूर दी हाँ गल करिए चाहे से युवा न चाहे से बच्चे न बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते न युवा भी कोई ना कोई सपना जड़े से दिखते न तिना जो साकार करने वास्ते जरूर मेहनत करते न पर कई बार हाँ मेहनत करते न या नहीं करते न से यहाँ पर निर्भर करता है पर हाँ क्या सोची करी चलते न कि हाँ किस प्रकार मेहनत करा दे न मेहनत करना कितना ज़रूरी है क्योंकि हर दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज़ सुन देन या कोई ना कोई यहाँ न्यूज़ हर दिन सुनते रहते न कने जड़ा युवा पीढ़ी की गल करिए कोई जड़ा से मेहनत भी करते न पर जड़ा नशे की ओर जा देन तो नशा कुथी ना कुथी मेहनत जो भी छीना था या हाँ मेहनत नहीं करना चाहते या हाँ अपनी जड़ा फैमिली है थोड़ा देर सोच विचार तो करके दिखा कि मेहनत कर देन ता ही यहाँ जो सफलता मिलती है फैमिली हमेशा अपने बच्चों ते क्या चाहती कि बच्चे स्ट्रगल करन मेहनत करी करी अपना जेड़ा भविष्य है उस जो बनान पर हाँ कुथु दिया अपना जेड़ा भविष्य से बना देन या कुथु दिया हाँ जेड़ा काम अच्छा करा देन तो इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न से यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कन्ने गलबात। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी नमस्ते जी स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक महाराज
0: जी।
1: हाँ जी
0: क्या हाल चाल है जी डाड़ चमंडा लेंदे।
1: हाल चाल जनाब बिल्कुल ठीक ठाक जी।
0: जी अच्छा ठीक ठाक ही चाहिए ना जी।
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हम जी हवा चलिए माड़ी माड़ी कहना आकाश से बदल भी है ना
0: जी।
1: हाँ जी
0: जी अच्छा बदलों का भी जेड़ा लूप तैसे तो हाँ लै देने क्योंकि मौसम ही जेड़ा से हाँ जो कुथी ना कुथी अपनी ओर आकर्षित करता है ना जी।
1: जी महाराज
0: जी तो हरदीप जी गल बात हाँ करा देन मेहनत ऊपर तो तुहा क्या अपने विचार युवा तक पहुँचाना चाहेंगे या जेड़ा बच्चे न से सुना दे तिना तक क्या विचार अपने रखना चाहेंगे तुहा।
1: मेहनत दे
0: जी
1: तो जनाब मेहनत करना इंसान जो तो बड़ी जरूरी है जी।
0: जी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी बड़ा जरूरी है।
0: तो हम इस गल ते सहमत है ना जी कि मेहनत करी करी हाँ हर चीज हासिल कर लेंदे ना जी।
1: मेहनत कर गए तो हर एक चीज मिल दी जी।
0: जी जी
1: कने अपनी तंदुरुस्ती भी होंगी
0: जी।
1: जे हम मेहनत नहीं कर गए तो हम दुबे मुंह वक्की कर दिखना
0: जी जी
1: खनमान कर गए तो हाँ अपने आप सब कुछ लेना कने अब तो यहाँ खरीदना है हुँ?
0: जी
1: कंजे नाम की निकलती तो दूसरे दिन में बाहर दिखना पड़ता जनाब हैं
0: जी जी जी
1: दूसरी गल है कि मेहनत करने से क्या इंसान बिल्कुल तगड़ा रहता है
0: जी
1: कहने बैठी रहे कमाए नहीं लोगों की सुनी जाए पैसा है तो फिर बड़ा निकम्मा आदमी होना
0: जी कने अगर हाँ कुथी ना कुथी अपने पेरेंट्स की गल करिए ना जी तो पेरेंट्स से भी अहाँ जो सीख मिलती है कि किन्ना अहाँ दे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया मेहनत की तिना ते अहाँ जो बड़ा कुछ सीखने जो मिली आता ना जी
1: हाँ जी मिल जाता जी
0: जी पर से अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ क्या पॉजिटिव वे च सीख देना कि नेगेटिव वे च सीख देना जी
1: जी महाराज
0: क्योंकि माता पिता ने से हमेशा अपने बच्चे वास्ते अच्छा ही सोच देना जी
1: हाँ जी
0: जी कि मेरा बच्चा जड़ा है से सफलता दी ओर बढ़े पर आजकल दौर की गल करिए तो कुछ ना कुछ ये चीज़ बिल्कुल कम दिखने जो मिला दी या बिल्कुल ही कम है
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्योंकि बच्चे भी पेरेंट्स की तरफ नहीं दिखते या क्या फैमिली का माहौल है या क्या वह कि यहाँ दे पेरेंट्स की साबे ने स्ट्रगल करा देना मेहनत करा देना मेहनत मजदूरी करा देना कि क्या करा देना फिर भी यहाँ अपने जिहड़ा शौक आंती ना जो पूरा करने च लग गया ना जी
1: जी महाराज
0: अगर कोई चीज़ नहीं है तो हाँ जो है चीज़ चाहिए चाहिए बच्चे का ये जिहड़ा जवाब है ना से अहाँ हर दिन कुछ ना कुछ सुन देना
1: हाँ जी
0: पर अहाँ अगर इदी पर सोच विचार करिए या कुछ सोच देना कि नहीं अगर अपनी फैमिली साइड दिख देना या अपने पेरेंट्स साइड दिख देना तो ज़रूर थोड़ा दिया सोच विचार करने दी ज़रूरत है ना जी
1: हाँ जी
0: जी
1: देखा ये एक गल और भी है
0: जी
1: इक्की घरे बिच सारा मतलब बड़े प्रेम प्यारे ने रहा ना
0: जी
1: तो बच्चे भी सीख
0: जी
1: रहे
0: जी ये भी तो हाँ ठीक बोले जी कि मिली जुली करी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे जो समझ होता बच्चा चाहे से अपने दादा दादी ते सीखता है चाहे अपने पेरेंट्स ते सीखता है चाहे बाकी जिहड़ा घरे दे सदस्य ने तिना ते भी बड़ा कुछ सीखता है
1: हाँ जी
0: जी जी पर से माहौल ही नहीं है बिल्कुल ख़त्म है से माहौल ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी कुती कुती
1: देखा
0: है भी जी
1: जी
0: जी
1: हाँ जी बोला जनाब
0: जी कुती कुती है भी कुती कुती नहीं भी है
1: हाँ जी आजकल तो जमाना ऐसा चल पाया कि आजकल कोई भागा वाला बच्चा होगा है
0: जी
1: सह अपने माता पिता नहीं सुनता
0: जी जी
1: है तो मैं कई दिखे ऐसे जेड़े बच्चे के घरे गला माँ बुढ़े गला दिखे फोन मत दिखते
0: जी
1: फोने मत सुन दे तो ऐसे
0: जी
1: बच्चे भी हैं जेड़े नहीं दिखते जी
0: जी जी
1: है मते
0: जी
1: दिखे कने कई ऐसे सब फोन नहीं टी लगे हो है 24 घंटे फोन नहीं लगे हो तो जो गलाना तो है बुरा मनना दे
0: जी
1: पर यानी अज के बोले नहीं जब सियाने गलांदे हैं बोले खरा दे खाद्य बोले पिछे दे स्वाद होंगे बोले आमले दे खाद्य पिछे दे स्वाद होंगे
0: जी जी
1: है तो
0: जी
1: ये गल है कि सारे गल्ला मानना चाहिए
0: जी जरूर जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: तो हरदेव जी आज तुह कुंतिया गीत सुनना पसंद करके
1: गला भी कर्ज तो मेरी ही है नहीं कि
0: जी
1: परसों तो हम बड़े सोहने भजन लाए सवेरे कबीर साहब दे हैं
0: जी
1: हाँ जी तो मैं सारा मैं सुनता रहूंगा तो हाँ कोई चार लैनी है मुझे कबीर साहब दी सुनाई ने
0: जी जी ज़रूर जी धन्यवाद जी तो हाँ इतना ज़्यादा प्यार रेडियो गुंजन धर्मशाला जो दिन देना जी
1: धन्यवाद महाराज
0: जी
1: जी
0: तो हाँ भी धन्यवाद जी
1: जी
0: तशु तो चल देना अगली फरमाइश दी और सुन देनी सब प्यारी दी या फरमाइशा जो तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

प्रशुतो तो सारे सुनिया ये गीत ए फरमाइश गीते दे बोल जरूर तुह सुने होने न ऐसा कुसी जो मंदा नहीं बोलना तो जरूर हमेशा अच्छी जिड़ा सोच है अच्छे जिड़ा विचार है से अपने अंदर हमेशा रखा कने इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा ना वे सुनील कुमार जी कने से रहने वाले न कोठियाँ जलोड़ ते तो जरूर कोठियाँ जलोड़ तक अह ही गीत पहुँचे आ इसी गीत के बाद अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं अगली फरमाइश अह तक पहुँची हुए दाड़ी ती कने तिना दा ना वे मेघनाथ जी तक अह भजन पहुँचा देना तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: આ બોલાદીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તો હા સારે ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ સુણા દેના આપની રેડિયો તો શશી કરને ઇસી કરને સફર તો હા તક રહેંદે દો તે તીન વજે તક કને ગાલબાત આહાં કરા દેન મહેનત દી મહેનત કરના કિતના જરૂરી હૈ ક્યુંકિ મહેનત બિના તો હા કુછ ભી હાસિલ ચડે સે નહીં કરી સકતે कोई भी काम में अगर अहाँ सिलाई दी गल कर दे ना अगर तो हाँ सिलाई कर दे ना तो हाँ अच्छे कपड़े सीन दे ना तो सभी तो हाँ च हुनर है एक पर दीदी वास्ते अगर तो हाँ मेहनत कर दे ना या पूरी लगन ने तीस कमे जो कर दे ना तो कुछ ही ना कुछ ही तो हाँ तीस कमे जो बेहतर करी पान दे ना क्योंकि सिलाई तो हाँ करा दे ना अच्छे कपड़े तो हाँ सिला देन ताई तो हाँ खुद जो जड़े से अगे बढ़ाई पा देन ते इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
1: ससे मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी स्वागत।
1: ओ ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी ठीक ठाक है जी तो हाँ ठीक ठाक
1: है। बड़े कोशिश करा तो नहीं लगा फोन ना
0: जी शायद बाकी श्रोता भी कॉल पर कॉल करा रहे थे।
1: हाँ पर तो और मैडम जी तो बड़ा अच्छा टॉपिक ले आज ना
0: जी।
1: हाँ
0: जी तो तुम क्या अपने विचार रखना चाहेंगे जी।
1: मैडम जी ये है ना थोड़ा ना
0: जी
1: पेरेंट्स भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चे अच्छा अच्छा सिखा बढ़िया इतना मैडम जी होना बगाड़ी थी दुनिया मत इतने कोई मिल गए मैडम जी दूर चो हां अंकल जी नमस्ते पैरा बंदे बड़े संस्कार अच्छे कई बिगड़ा बिगड़ेल बुरे हल्या
0: चार बजे जी। अच्छा 4 बजे रेडियो सेट ऑन
1: ओ बस मां तुंजा पाठ होंदा ना मैडम जी तना मजा आंदा ना
0: जी
1: बहुत ही मतलब तुहे कितने आशीर्वाद दिंदे हो मिला इया कता सुनने अगने ते 5 बजे तक 5 बजे तक तो बंदना लगी पंदी
0: जी जी
1: टोन तक लगे ये प्रोग्राम रात तक चल बंद नहीं होना चल ते कर
0: जी जी
1: सर बड़े बड़े अच्छे अच्छे भजन भी आगा दिंदे ने बड़े चकने मां तुंजे कने ते दिंदे ने मैनु सुंदरकांड
0: जी जी
1: बड़ा इतना एंजॉय हुंदा ना पुछा मत सारे सुन दे मैं तो सवेरे लाइन ना 4 बजे
0: जी
1: भाने ससू ना गुण मारे नूह चो खाना बनाया बस इस नीमा चौधरी आवाजा
0: चाहगा
1: तो दिखने अवेलेबल होगा ना
0: सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने तो श्रोताओ इसी गूंज कने फिरी ते अपने कार्यक्रम जो अगे बढ़ाते हैं कने तो जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया एक गीत भजन ये भजन हाँ हरदेव जी तक पहुँचे है कने सरहने वाले न डाड़चू मंडा ते। इसी कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने कने सफर दा जड़ा समय ऐसे अपनी रफ्तार लेकर जरूर चले है कने हाँ भी अपनी रफ्तार लेकर जरूर चले न गलबात हाँ करा देन मेहनत दी। मेहनत बोलने वास्ते तो छोटा दिया लफ्ज़ है पर हाँ मेहनत करते न ताही यहाँ अपने सपनिया जो साकार करी पाते न ताही यहाँ सारे ही काम जड़े से करी पाते न चाहे तो हाँ पेंटिंग करते न तो हाँ पेंटिंग च अच्छी पेंटिंग करते न कने पेंटिंग करी करी कुथी ना कुथी तो जो खुशी मिलती है या तो हाँ दीदी पर भी अपनी जड़ा मेहनत है से ज़रूर लगाते न क्योंकि हर कुसी अंदर कोई ना कोई जिहड़ा हुनर है से जरूर होंदा है या तो हाँ पेंटिंग करा देन या तो हाँ सिलाई करा देन या तो हाँ कोई भी काम करा देन कुछ खास तो जो खाना बनाना ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि खाना बनाने का भी एक हुनर जिहड़ा से हर कुसी अंदर होंदा पर कई बार होंदा ना कि उस हुनर जो हाँ भी कैच कर देन कि नहीं किस तरीके ने हाँ इस काम जो करिए या किस तरीके ने हाँ अपनी ज़िंदगी अगे बढ़ सकते या कोई भी काम में से अगर हाँ सीख देन तो ज़रूर इस काम में जो हासिल भी कर देन पर निर्भर हाँ पर करते हैं कि हाँ इस काम में जो कितनी की लगन करें मेहनत ने करा देन तो ज़रूर इसी लगन करने मेहनत करने हाँ फिर ते अगे बढ़ना है कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है तो ज़रूर ये फरमाइश हाँ राकेश जी तक पहुँचानी है जेड़ा तिना गाना दस्या था से तहाँ जो नहीं मिलया पर ए और ही गीत जेड़े से तिना तक पहुँचा देन
1: और दूसरी तरफ

कानूनी दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश इसे फरमाइश के बाद हाँ फिरी ते अपनी गलबात ऊपर पुजी हो न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जरूर जुड़े होने न परदेश दी गल करिए तां जितने भी स्कूली विद्यार्थी हैं तिना जो राज्य दा इतिहास कने संस्कृति कने इसी कने अर्थव्यवस्था या राजनीति जेड़ा बोलियां न या हंदी जेड़ा परंपरान व्यंजन दी ऊपर जेड़े से जानकारी जेड़े से जरूर मिलनी है तो जरूर ये जेड़ा विद्यार्थी हैं तिना जो संस्कृति दे प्रति भी ज्ञान जेड़ा से तिना तक पुजना है कने जेड़ा हंदी अर्थव्यवस्था है तिदा ज्ञान भी जरूर तिना तक पुजना है। शिक्षा मंत्री जेड़ा

रोहित ठाकुर दी अध्यक्षता च ये बैठक जेड़ा से छठी कन्नै अठमी कक्षा वास्ते जेड़ा पुस्तक च व्यापक जेड़ा बदलाव है या सुधार दी चर्चा जेड़ा से जरूर कीती हो है। इसी कन्नै प्रदेश दी जेड़ा आर्थिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है या स्थानीय बोलियां न या अहां दा जेड़ा पारंपरिक खान पान है इसके बारे च भी जेड़ा जितनी भी जुड़ी जानकारी है से स्कूली जेड़ा विद्यार्थी हैं तिना तक पहुँचनी है तो जरूर ये पहुँचना जरूरी है। जेड़ा युवा पीढ़ी है या जेड़ा आने वाली पीढ़ी है तिना तक संस्कृति या जेड़ा अहां दा खान पान है या अहां दा रहन सहन है या अहां दी जेड़ा बोली है से तिना तक पहुँचना जरूरी है तिदा ज्ञान तिना तक पहुँचना जरूरी है। तो जरूर ये जानकारी तुहां तक पहुँचाई कने इसी जानकारी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने फेसबुक के माध्यम माध्यम से अहां तक के फरमाइश या श्रोता न तिना फरमाइश की हो है कि वर्षा कटोज की आवाज़ कोई भी गीत तिना सुनना है तो जरूर तिना तक अहां ये गीत पहुँचाना है कने से रहने वाले न खन्यारा ते कने तिना दा नाव है चरण दास जी तो जरूर तिना तक अहां ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे आपने रेडियो तो शशि करने तशु तो आज के कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है सेतु ही संपन्न होंदे तो हाँ सारे ही अपने रेडियो तो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा कने मेहनत जगह से करते रहा कने अपने माता पिता दा मान सम्मान जड़े से जरूर करा इसी करने आपने रेडियो दो शिशु दिया अनुमति।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
6: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता।
5: बहू, ठीक किया है तूने,

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तो आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
6: मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज,

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने, नए पुराने।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: अरे चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट, टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट,
2: टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है, टेस्ट,
3: टेस्टिंग,
4: टेस्ट,
2: टेस्ट।
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो आपने

0: व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी।
5: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है, अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
6: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ। आरजे सचिन कपूर सुंदा अपना आरजे क्या हाल चाल है श्रोतों तुंदे, उम्मीद कर रहा हूँ खरे भूणे खुश भूणे तंदुरुस्त भूणे हिन हमेशा बोलो ना अक्सर बोलो ना श्रोतों, और तो है होप्स हो कि आप भूणे भी हिन है ना, कजो कि खुश भूणा तंदुरुस्त भूणा की सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोतों लाइफ में। और हम तो बोलूँ कि जितना हंस ही सकते खुली करे उतना हंसो भी करे श्रोतों को, जो कि जो लाइफ में हंस दे ना श्रोतों त्यारा हंसने हो मतलब तो है सोचा कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज किया सो बंदे, अगर तो है हंस देन था हंसने तो बहुत अच्छी और प्यारी एक्सरसाइज किया सो पूछे गंदे तो हंस दे रहे हो करे मुस्कुरा दे रहे हो करे बहुत ज़रूरी है लाइफ में हंसना और मुस्कुराना और खुश रहना चिंता मुक्त रहना। तो कभी डॉक्टर लगे छे ना और डॉक्टर दस से कुछ भी तो डॉक्टर भी कोई मतलब है रिलैक्स मूड वाला डॉक्टर बोला और अच्छे मूड वाला बोला था तस तुस वे ज़रूर बोलना कि मतलब एक्सरसाइज ज़रूर करा वॉक ज़रूर करा तो खुश किया सो ज़रूर रहो करा और इस गलत ज़रूर है बोलने की चिंता मुक्त रहो करा, यानी कि चिंता ना करनी कसी गल रही चिंता चिता समान बनती हर श्रोतों। तो सचिन कपूर बिल्कुल हाजिर है जनाब कार्यक्रम हिंदी अपनी का पले करी बहुत सारी न्यूज़ बहुत सारी खबरें के नो असू बोले हिन श्रोतों जो असू तुसू तक पहुँचानी हिन और सोगी सोगी तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 708-709 पर नंबर अक मुके फिर हम शेयर करी नो 708-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं। यह गलारा खास ख्याल रहे श्रोताओं जानकारी किया सो रेडियो मंच साझा करने लायक ज़रूर बहुत जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक श्रोताओं ज़रूर हुआ। तो ऑल इज सेट इन द कार्यक्रम पूरा सेट बुझको श्रोताओं है अब फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो लाइव फीज सकते और फेसबुक रे माध्यम तो भी है जानकारी के अनुसार हो गया है शेयर कर सकते हैं साझा कर सकते हैं और सोगी सोगी व्हाट्सएप रे माध्यम तो भी श्रोतों। चलिए जी आगाज कर लेंदे की बहनियों की अपने भाई रहा बड़ा सुंगर लग रहा और श्रोताओं तो अक्सर बोलो बार बार बोलो कि रिश्ते के अनुसार धोनी साइड तो निभिंदे है ना कि कभी भी तो है वह तराजू में जहने तो है कोई भी चीज़ तोल दे ना सब्जी तोल दे थी है या आजकनी डेट में कुछ भी तोल दे ना चीनी तोल दे मीट मछियाँ कुछ भी तोल दे ना सो सो तराजू किया सो बराबर बुने रहे इंतज़ार किया सो करदा ना तत्तियाँ ही रिश्ते अंदर भी बुनता हा श्रोतों रिश्ते भी आकर तराजू ही ये बुनते ना कि सो बराबर रहने चाहते मतलब बराबर किया सो प्यार तोपते हैं और अगर रिश्ते मंज बराबर प्यार इंदा ताई रिश्ता क्या सो निभाने रहा मजा भी इंदा हा श्रोतों। और लेकिन मुझे ये लगता कि बहनियों की सो भाई रे ज़्यादा दा बुनते हर बहनी जो अपने भाई रे किया सो ज़्यादा दा बुनते है ना कभी कभी ये रे कर मुझे भी लगता कि काश सब कुछ ठीक बोआ लेकिन चलो मेरी भी दुई बहनी हिन त्राई बहनी हिन। फिलहाल कार्यक्रम जो हगू बढ़ते हैं श्रोता और ये अक्की बहनी है बोल रहा कि मेरा नाम अट लेंदे मुझे बड़ा सुंगर लग रहा है अपने भाई रा और चलिए ता रिश्ते तो बहुत अनमोल हैं हिंजो संभाल के रखना सभी रा हक बनता है श्रोतों का सी अक्की रा हक ना बनता कि कोई आके किया सो रिश्ते जो संभाला। जी मैं एग्जाम्पल दिता कि जो तराजू बंदा हा शोतों तोलने वाला जो बंदा हा तो तत्तियाँ भी किया सो वेट दोनों साइड बराबर बुआ ताई चीज़ किया सो मेंटेन बंदे और ताई चीज़ किया सो हगू गंदे है ना यानी कि कस्टमर हल है गंदे है। और अगर चीज़ मेंटेन ना बुआ तो फिर ना मजा तो चलिए आगाज़ कर लेंदे कार्यक्रम रहे इस गीता सोगी बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज।

0: चलिए श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सोगे हुनु कर देन इंदी अपनी गप्पा था। चलिए सुंगरता वे सब भी वे लगता है ना, लेकिन मुझे लगता कि जो मोर रिश्ता बंदा है श्रोतो, सो रिश्ता ना सो वक्फ रिश्ता बंदा है, मोर रिश्ता तो बुझे ना सकता है ना। हर रिश्ते की कदर के सो जरूर करना चाहिए, भाई बहन भी कदर जरूर करा है ना। इवन कि आफ्टर मैरिज भी है एरदन की बड़े चीज़ें कहना, सो बदली गंदी ना ना चेंज बच गंदी ना। बहुत सारे रिश्ते तो है एनालाइज करे बुने कि हाँ कोई कौन किए बदले करता, कोई कौन किए बदले करता था। रिश्ता बदली ना ताई थोड़ा बनूरे भगवान ने, रिश्ते प्यारा होगी रहने ताई कि सो बनू रहे। बहरहाल आख रिश्ता बे ऐसा हा, माँ सो गल जरूर तुसोगे शेयर कर ला श्रोतों, लेकिन इन श्रोता असोगे कनेक्टेड हिन। तो सब भी ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर जी तुसोगे इन श्रोता करना सोगे कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी, हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, हेलो, आवाज नहीं सुन दी जनाब तंदी।
1: नमस्ते अंकल जी।
0: हाँ जी,
1: कर
0: लग रहे जी, बल्ला कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन। हाँ जी,
1: नरवाने हूँ बल्लू दिया,
0: नरवाने थो। क्या ना जी तुंदा?
1: माधवी।
0: अच्छा, और करे लग रहे जी, बल्ला कौन देने होना
1: जी? कड़ो दी है।
0: हाँ जी,
1: बिकड़ो दी है।
0: बिकड़ो दी है,
1: ढिकड़ो
0: ढिकड़ो।
1: हाँ जी,
0: ढिकड़ो दी है।
1: हाँ जी,
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तू सुए गीत, धन्यवाद। चलिए श्रोतो, अगले श्रोतागण जो कि सो है कनेक्ट कर दें तो सब बन रहे समय आज सचिन का पूर्स होगी और फिलहाल अगले श्रोता जो कर दें कनेक्ट। नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक ठाक?
2: ठीक ठाक जी, बढ़िया।
0: राजीव बाजी करे लुगरेन?
2: राजीव बाजी जी बहुरे।
0: अच्छा अच्छा, किने किने गच्छ करदा बरसाला?
2: बरसाला जी ठीक है, लगभग
0: चल रहा है, ढंडा बंदा।
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए ठीक है जी। कुंडली गीत होना पसंद कर ले तो है?
2: हाँ जी, हम जेंगो गाइड बलगुंडा सिद्धवाड़ी से हूँ
0: जी। जी
2: हाँ जी, गाना होना चल वो जिंदे मनी मेसा।
0: अच्छा
2: धीरे सर मैं,
0: चलो ठीक है जी, जरूर तू सुए गीत होना ले है ना।
2: हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद,
2: धन्यवाद
0: जी। अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड है, श्रोता उस दिन कौन बल्लू देन। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते
3: जी। क्या बोल रहे? निर्मला देवी जी।
0: अच्छा निर्मला देवी जी, कड़ी बल्लू देन
3: जी, नगरोटे जी।
0: अच्छा नगरोटे, क्या बात है
3: जी।
0: जी निर्मला देवी जी, कौन देने गीत होना तुसु फरमाइश दसा पहले अपनी।
3: हां जी, प्यारी बोटली जी।
0: प्यारी बोटली, क्या बात है।
3: हां जी, हां जी, सज्जे चोरी बड़े भारी पवा दे जी।
0: हां बड़ी भारी।
3: अबे तो मुश्किल हो ही दिना भी राती हो भी।
0: अच्छा
3: हां जी,
0: ओहो चलिए ठीक है जी।
3: पता नहीं सर जी, चोर निकल स्टोर से कोई पता नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी, ध्यान रखना ना था अपना भी तुसु।
3: हाँ जी, धन्यवाद जी,
0: ठीक है जी, धन्यवाद। श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा गैन सो चल रही है। तो आइए श्रोतों

कार्यक्रम जो है वो वृंदहीन और कार्यक्रम मंच ये जानकारी तुसों की जरूर साझा करे गंदे हिन शतों गंदे गंदे ये जानकारी जरूर साझा कर दे हिन। प्रदेश सरकार की है सो हिम केयर योजना री जगह पे नवा इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने री की सो तैयारी मंच हा सरकार ठेरे अलावा विभागीय स्तर पर के औपचारिकता पूरी बुचु कर दी हिन श्रोताओं और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की सो शुरू बुचेगा। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले पात्र मरीजा जो कि सो इलाज भी सुविधा के सो मुड़ेगाने हैं कौशल इलाज री सुविधा के स्रोतों सो मुड़ेगाने हैं और सरकार रो उद्देश्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा जो अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी दवा पर अंकुश लगाना हा स्रोतों। प्रस्तावित योजना में सब तो बड़ा बदलाव ये बुना है कि मरीजा भी पर्ची में दर्ज जो बछूरा बुना टेस्ट और उपचार डिजिटल स्तर पर सत्यापन किया सो भूना हा श्रोतों। तो इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला चले रहना हा बने रहे तो ऐसा बार जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही और हम बिल्कुल जितने भी और श्रोता कॉल करू कर दे सभी कनेक्ट जरूर कर ला लेकिन जहने भी है कखा रेडियो मंच या फिर कड़ी भी ऐसी जगह गया सो कसकी ऑफिस में गंदे हिन है ना या कसकी स्कूल गंदे हिन या ऑफिस में डीसी ऑफिस गंदे हैं या अन्य किसी भी ऑफिस में गया सो है गंदे हैं तो एक गल रहा सो खास ख्याल किए सो रखना पैंता है कि यह सामने बिखरे जो भी बून तीनों अंकल या आंटी या फिर कोई भी आ जिस तरह भी एज ग्रुप हुआ तीनों है ना बल्ले सकते हैं तीनों है कि सो सर या मैडम करी करी किया सो पुकार ही सकते हैं है ना जी। जाए सो असू 20 साल ही मुट्टा को ना बो जाए सो असू मतलब 50 साल ही मुट्टा को ना बो है तीनों सर या मैडम करी करी किया सो पुकार ही सकते हैं। तो अगली बार ज़रूर ख्याल रखें ज़रूर ध्यान रखें जहने ब्याह है या रेडियो मंच कॉल कर दें या अगर खा हॉस्पिटल में गन दें या फिर यह है डीसी ऑफिस गन दें आरटी ऑफिस गन दें अन्य सरकारी कसी भी दफ्तर अंदर है गन दे हिन तड़ी कसकी भी भाई बल्ले करे या भैया जी बल्ले करे या फिर अंकल बल्ले करे या आंटी बल्ले करेगी या सो ना पुकार दे है ना हमेशा है सर या मैडम शब्द रहा इस्तेमाल किया सो कर दे हिन। तो ये गल रहा बिल्कुल खास ख्याल रखना बरहाल हूँ सचिन कपूर और मुझे होगी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंसो तो सब हूँ कर दे हिन। तो आइए जी भोले शंकर जी रहा ना आके सो ले लेंदे हिन और ना लेना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं को जो कि चल वो जिंदे मणिमेश।

0: श्रोता एफ एम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुन्जन धर्मशाला 2 ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो गेहूं कर देने दी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन है। चलिए जी कार्यक्रम जो हको बढ़ते हैं श्रोता और धर्मशाला रे विधायक पर FIR किया सो बोए FIR किस वजह से बोए यानी कि सुधीर शर्मा पर आए तो अधिक संपत्ति मामले में किया सो विजिलेंस है किया सो सुधीर शर्मा पर कस हुआ सिकंजा श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ब्यूरो की सो धर्मशाला रे भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के खिलाफ के सो आए तो ज्ञात स्रोतों अधिक संपत्ति रखने वे आरोप पर किया सो FIR दर्ज करे है श्रोतों और जांच में मिल रहे पुख्ता दस्तावेज और सरकारी एजेंसी भी मूल्यांकन रिपोर्टर है आधार पर विजिलेंस की टीम में किया सो धर्मशाला थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम री संबंधित धाराओं पर FIR दर्ज किया सो करी दी है श्रोतों। लेकिन इसी बीच अगले श्रोता भी न लेकिन सुधीर शर्मा बल्लू कर देन के व्यक्तिगत प्रतिशोध रा मामला हा भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ये बल्लू हा कि राजनीतिक प्रतिशोध नहीं हा बल्कि व्यक्तिगत प्रतिशोध रा मामला हा इसे सो इस सो बल्लू कर दे हिन श्रोतों कि व्यक्तिगत तौर पर ही एक यह मामला इंजा निपटाना हा। सुधीर शर्मा राय बलना हा कि मुख्यमंत्री 2 बार किया सो विजिलेंस और इनकम टैक्स थो जांच के सो करवाई चुक रहे हिन बार बार किया सो तंग करू कर दे हिन और जहने तिंजो विजिलेंस पर केस करो और नोटिस गो हा तासो बचाव वास्ते कि अब सरकार ऐसा हथकंडे के आसो अपनाओ कर दे हा। सरकार है बल्लू कर सुधीर शर्मा जी बल्लू कर दे हिन कि सरकार है कि आसो मेरी जमीन अकाउंट सब चेक करवाए दिता हा। सुधीर शर्मा रे बलना हा कि सो अपना हिसाब पहले तो पूरा वकुरत इन है और अब कोई खुलासा ना भूल सकता है और जवाब देना किया सो सरकार और मुश्किल बुझाना हा। अगर मतलब इन्हें अब जो भी है श्रोता हूँ फिलहाल ये चीज़ अगेन जो जानकारी थी सो है तुसु तक पहुँचाई है इन श्रोता इंतज़ार करो कर दिन कनेक्ट कर दिन। नमस्ते जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: क्या
0: बहुत बढ़िया जी तो है भला तो है ठीक ठाक।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: करे लुगरे के लूरा कमाना
1: मौसम को ठीक है बरसा लगने वाली है गाड़ी से बोला रहे गए नाथ
0: जी जी
1: बरसा लगने वाली है बरेले बैठे हो तो आड़े प्रोग्राम में सुना दे
0: जी।
1: ना
0: बढ़िया जी बढ़िया तो हाँ बोला तो है ठीक ठाक। शकुन देने की थोड़ा जनाब
1: सुनाई दिया तो हाँ ये नवा चले आए अमन तोर दिया वजह से।
0: हाँ जी
1: एक गाना सुनाई दिया।
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जनाब धन्यवाद। थोड़ी घर स्टूडियो शो तो लाइट की ऐसा चले गया और ठीक भजन थोड़ी करी मुझू तकलीफ हो चु कर दिया। बहरहाल तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सो गया और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के न सो हूँ करते हैं। चलिए तब कार्यक्रम जो थोड़ा करी और आगू बढ़न दे हिन शो तो और अह भी लाइटर इंतजार करो कर दिन तीन तक रहे फरमाइश और दौर के सो पूरे कर लेते हैं। बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गूंज अपने बन रहे।

Shoto FM Band Gyan Vidrisham Lab 2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा तो है सब हुनु कर देन आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव वे कार्यक्रम चल रहा। आइए जी फरमाइश रहा दौर तय चलते रहना वे लेके चलते तू और जानकारी होगी रूबरू कर बंदा इन श्रोताओं प्रदेश वे सब तो बड़े जिला सब जान दें कि हिमाचल प्रदेश में सब तो मोटा जिला क्या सोइंद अपना जिला जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा में मानसून तो शो तो क्या बुआ पता तुसु हम दस नो जाली को से अपना लाइट नहीं है ना लाइट के बंदे था फिलहाल तू सब भी दसना लगो हा कि क्या हुआ हा। हाँ प्रदेश का सब तो मोटे जिला कांगड़ा में मानसून तो मात्र अक्की महीने में किया जुलाई में ही किया शो सो भारी तबाही मचे आ भाई मत सोचा कि धर्मशाला मंच गया सो सब कुछ ठीक है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ठीक भूना ना ऐसा बिल्कुल नहीं आ बिल्कुल शो तो पहली तो 30 जुलाई तक आऊँ आंकड़ा तो सो दसना लगो पहली तो 30

0: जुलाई तक जिला में एक अरब 40 करोड़ रुपये रा नुकसान, 1 अरब 40 करोड़ रुपये नुकसान रा आंकलन किया सो भुआ हादसा तो। इस दौरान 18 मनु रे मौत बुझ गए हैं, जबकि 40 के न सो गाय बकरी मरेगी। इन कुल मिलाई कर गाय बकरी के न सो कुल मिलाई के 40 मरेगी। हिंद सो तो त्यारे भी जान गए हैं, और सब तो अधिक क्षति जो आ यानी कि सब तो अधिक नुकसान जो आ सो लोक निर्माण विभाग जो 106 करोड़ रे करीब रा नुकसान हुआ है, और जल शक्ति विभाग जो 28 करोड़ तो अधिक वह नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन राहत एवं बहाली कार्य में युद्ध स्तर पर जुट रहे तथा प्रभावित क्षेत्र पर लगातार नज़र किया सो बन रहे हैं श्रोतों लगातार नज़र किया सो रखो कर दे हिंद। और तुसो दसना चंदा जिला प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDM में भी रिपोर्ट रहे अनुसार कांगड़ा रे कांगड़ा मंच बरखा और भूस्खलन थो 18 कच्चे और 17 पक्के मकान पूरी तरीके हो गया सो क्षतिग्रस्त भुज गया है। इन शतों 33 कच्चे और 11 पक्के मकान जो किया सो थोड़ा नुकसान हुआ है, और ठूंजा गौशाला और तराई दुकाना भी पूरी तरीके हो गया न सो क्षतिग्रस्त भुज गई है। इन शतों सब तो अधिक प्रभावित क्षेत्र में शाहपुर रेबो घाटी शामिल है शतों जो गया है सब बखूबी जानते हैं, जड़ी कई परिवार के अनसो राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध तिन्याओ बच्चों कर दे हा। क्षति रे आंकड़े रे अनुसार लोक निर्माण विभाग जो सब तो अधिक 105 करोड़ 30 लाख रुपये, जल शक्ति विभाग 28 करोड़ 1 लाख रुपया, कृषि विभाग जो 83 करोड़ 85 लाख रुपया, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो 91 लाख रुपये तथा बागवानी विभाग जो 6 लाख रुपये रा नुकसान किया सो भुआ हादसों तो। निजी संपत्ति में मकाना जो 76 लाख रुपये, गौशाला जो 13 लाख रुपया, 13 लाख 21 हज़ार दुकाना में 1 लाख 10 हज़ार और एक प्राइवेट पर्सन नल दसुगरदा मावेशी जो हिंद तिन्यों 12 लाख रुपये रा नुकसान किया सब हुआ हा। मानसून रे दौरान हले तक जिला में 188 घटनाएं क्या न सो दर्ज हुई हिंद शतों सोचा तो है। हाल बेहाल है इस समय मानसून पूरा ए में 30 तक रा आंकड़ा किया सो जुलाई रे तुसु 10 वाकत हूं 30 तक रा ते आंकड़ा असु तक बुझो तो शो तो है तुसु तक के असो शेयर करी ता बहरहाल बहरहाल कार्यक्रम जो है सब आगो बढ़ंदे हिन, और कार्यक्रम मंच तो सब इस समय आर सचिन कपूर शो होनो कर दे हिन शो तो कॉल जरूर कर सकते हिन 708-8-8-7-0-9 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं, और अपना पसंदीदा गीत के श्रोतों सो भी होने सकते हैं। तो चलिए जिंदे रेगुलर श्रोता हैं पूजा भट्ट जो कि पूजा भट्ट जो हैं सो श्रोतों नॉर्बलिंगा थो हैं, और तेरी फरमाइश में आएगी तो सब भी किया सो जरूर होना। बहरहाल इन देश श्रोता सूगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: हाँ जी सचिन जी क्या हाल है ना?
0: बहुत बढ़िया जी, तो बल्ले तुंदे के हाल ना?
1: बस आए बढ़िया ना, बस चाय बनाया चाय लग गया पीना। ओंकार बिरसैन बल्लुदा नॉर्बलिंग का तुम
0: ओंकार बिरसैन जी नॉर्बलिंग का बल्लुदे
1: हाँ आगे तो ये तो धारा दूरा दे टॉपिक के छिड़को हो जिया था लगूरो हम योग करना बंद था ना टाइम बची हो जिया।
0: जी जी जी जी जी बिल्कुल
1: सचिन बाद फिर टाइम ना लगो जिया तेरा हो।
0: जी जी जी
1: हाँ तो 3 दिन ना हुआ इधर आते हैं बरका था बड़ी जोरे कुछ वर्दी इंजिया बरसात ठीक ठाक है मतलब खरा जोर पकड़ो बरसात जिया।
0: जी काफी ज्यादा बरका बच्चों कर दिया।
1: हाँ आए पीछे मेरा जुरे ही है केंद्र कला यात्रा वास्ते।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ तो आने पर ध्यान आ जी। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अरे केंद्र कला यात्रा जुरी है तारा बरखा बुरखा बड़ी थी।
0: अच्छा
1: दो त्रा दिन रुके रहा था फिर आए तो मतलब चले गीचे आ जी ना।
0: हाँ जी
1: अगो नाला आ गए तो तरंगड़े होंगे तो तरंगड़े झूठे छोड़े जी सुखते सिर हों तरंगड़े होंगे तो तरंगड़े झूठे छोड़े फिर रोतियां तो टेंट आए जड़े ढड़ी सोतियां तो बनाया तरंगड़े तरोंगे बगैर तो फिर कर दर्शन जी है ना।
0: अच्छा
1: पिछले साल श्रीखंड महादेव छूटे गया।
0: अच्छा
1: मैं लो चल बरसाती बरसाती आकर दूर लगाई दिया है ना।
0: क्या बात है अपने आप जो टाइम कर और दरबार में गाना तो बड़ी अच्छी गाल है जी।
1: अगर दोते राइजिंग स्टार गाने का प्रोग्राम है।
0: क्या बात है
1: टुटे आ हानी हो तेरे गड्डे जड़े तो स्कूल लग रहे जी आता दोते प्रो दी टुटी ना
0: जी
1: दोते राइजिंग स्टार धड़ी रहना पारा तो रखड़ा तो हां सिर बाड़ी तो उत्तो उत्तो करी करी धारा जी है ना।
0: अच्छा
1: तसी वाले रहना पारे भी दुई रात करती दुई टाइम गए जियां दुई रात करती जेरे तड़ी।
0: अच्छा
1: तो मैं लुटा जी गाना ना तो नराणे तो रत्तो और जीने पास हम दा तो।
0: अच्छा
1: राग सारा रत्तो जी है ना
0: जी जी जी
1: तसी गेगा वगैरह लेंदे तो मैं लुटा जी बनना के करके त्राए किलो के रखे नहीं है ना
0: जी जी कितने भी किलो दिन दिन सोगी जी
1: सोता पारता है जार रुपया लियो ना बड़ी मुश्किल होता त्राए त्राए किलो लिंदो पार जी है ना।
0: हाँ जी
1: जार रुपया पर बल्लो तो बल्ला बोन ग्रां के दीना बल्ला था 1200 रुपया था एड़ी बल्ला 1100 रुपया जी है।
0: अच्छा
1: इस बड़ी मेरा ख्याल शायद 1100 रुपया होना ऊपर धारा जी है ना।
0: अच्छा
1: बल्ला ग्राए के बजाय कर दीना बल्ला था गया ग्राए 1200 रुपया पर गे बड़ा बढ़िया होता जी है ना।
0: हाँ जी
1: हाँ गे का मतलब खाना तो यहाँ पता लगता कि हाँ कि वाकई अच्छी है जी है ना
0: गेहूगा वो अरे
1: हाँ अरे आगू एक लगना है संगोह का लगना है संगोह का जो गे हों बड़ा बढ़िया होता जी है ना।
0: जी जी जी
1: तो सोचा जी बल्ली ना के करके चोर चोर किलो गे कर रखे जी हाँ
0: हाँ जी
1: तभी बाद फिर संगोह का टाइम में खाना जी संगोह का खत्म होना ता खाना ता लेना फिर जी है ना। तीन दिन आओ यार कप का बड़े लंबे लगाने पर टाइम है कि टाइम पे ओ बच्चे को घट रहे हो जी हाँ पौने पांच बंदे है ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो आता है गाना
0: ना, ना चलो गापना तो है अपना एक्सपीरियंस की सो शेयर करो कर देने और ये बड़ा ज्यादा जरूरी जी इंदा प्रोग्राम यूनिक था है ना कि अपना एक्सपीरियंस की सो इंदे श्रोता शेयर कर दे ना।
1: चलो दो त्राई मिनट तो और तू थोड़ा और करंदा जी आओ ना।
0: जी जी
1: अनिल पसान जरा बल्लू करता ना
0: जी
1: आया था मतलब है कि पीछे जून माह त्राई ट्रैक लगाई दूर फिर मर जी ना तो मतलब छुट्टी बूंद जी दुई छुट्टी बूंद कोई हंधे जी फिर ना।
0: अच्छा
1: दुई ट्रैक त्राई ट्रैक जून में त्राई ट्रैक लगा रहे ना।
0: हाँ जी
1: जुलाई में फिलहाल आके लगा हुआ जी एक लगा हुआ फिर किन्नर क्लास का ही जी।
0: हाँ जी
1: पर यह खरा निगर लाई हुआ ना यदा जी मतलब पंजा सत्त ट्रैक करा आके भी जंदा जी एदा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये तो इस बार दोने के 8-8-16 किलोमीटर तो जी।
0: हाँ जी
1: 8 किलोमीटर नीचे के कौन आता 8 किलोमीटर आके दिन जरा पड़ाव तो सो तो जी आता बाकी 8 किलोमीटर दुए दिन था 8-8-8 ऊपर हो गया जी क्लास पर बताओ
0: जी
1: 8-100 8 फिर वापिस आया था कैंपा जो 8-100 8-8-16 8 फिर आया नीचे मतलब इच रहा जी नीचे 250 में नीचे इच रहा जी मेन रोड पर जी है ना एकांकी तो परले पास जी
0: जी
1: 24 किलोमीटर करी था तो क्लियर था फिर सती बाद फिर तड़ी तू चले आया था फिर पारी जी रुके मतलब 45 किलोमीटर आया फिर गड्डिया तड़ी वापिस चले जी है ना आया 9:30 बजे रात जरा तू पुजे जी टपारी जी है ना
0: जी।
1: आओ तो 3 दिन आते फिर तो वो तो पिछले साल जरा श्री खंड का करूंगा तो बड़ा लंबा हो 37 किलोमीटर तो आग साइड था जी हाँ बड़ा लंबा ट्रैक ना। तीन दिन आते आए तो जने छुट्टी बूंदा है तो चल फिट हो इंदे ट्रैक ही होंगे जी है ना तभी मैं स्लीपिंग बैग मैट्रस अग थले या प्लास्टिक करा पीस पूरा होंगे जी करके किचड़ कचड़ बोआ था तड़ी चल भी थले पहले प्लास्टिक करा पीस जरा सो पाई लियो जी आता सो कर लियो जी सो त्री चौ आदमी वास्ते जी सो सो कर लियो तो अग अग कुकर अग पतेलो।
0: अच्छा
1: दिमाग फ्रेश हो जाता जी है ना।
0: क्या बात
1: ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਚੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨਾ ਤੋਂ
0: ਫੋਨ ਫਾਨ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਨਾ
1: ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਨਾ
0: ਅੱਛਾ
1: मतलब ठीक ठाक हो रहा तंदुरुस्त रहा जी हना
0: फिट बच जाता
1: एनर्जी चले दूसरा पानी ठंडा पानी जी तीन दिन धारा दूरा खिली पे पर कोई कोई कच्छू करता हक के गंदा तो जरा रकड़ा तू दवाड़ी तू उतो जी
0: हांजी हांजी
1: बाकी नराणा पास गंदे दो त्राए जी
0: हांजी हांजी बिलकुल
1: बाकी तो धारा जी डेई गई टपरी टुपरी डेई गई जी
0: अच्छा
1: तीन दिन आवे इधर चलो ठीक है गाना हनाई दिया कोई बढ़िया ही ना जंगलात लिया हनाई दिया जी है ना
0: अच्छा
1: हाँ तो चलो ठीक है फिर बाद में मोल ले फिर
0: ठीक है जनाब बहुत अच्छा लगो तुझे की गल करी करी और तुम एक्सपीरियंस जानी करी बहुत बहुत धन्यवाद
1: चलो पिछले साल था मैं और नागदाड़ा जुड़े गया है ना जन्माष्टमी हो
0: जी
1: नागदाल तो बड़ी इच्छा थी कि मो ओ जड़ा कुप्ती जोत जड़ा सो क्रॉस करना जी है ना कुप्ती जोत जड़ा सो जासना जी आता सो क्रॉस करना जी है
0: अच्छा
1: पिछले साल था नागदाला जी करे थे नागदाला तो फिरे इनकी क्वारसी जी आता क्वारसी तो फिरे कुप्ती जी आता कुप्ती तो फिरे ओ कुप्ती पास जड़ा सो क्रॉस करे करते तो लोकी ना आते तो लोकी ना तो फिर पीछे मनाली में बची कर जी हाँ बड़ा लंबा ट्रैक लगाई तो नहीं आता
0: चलो
1: ठीक है ठीक है फिर
0: ठीक है जी धन्यवाद धन्यवाद
1: ठीक है अच्छा ठीक है
0: चलिए शो तो चल रहे कार्यक्रम तो सब हुण करदे एफएम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच और लेकिन चलते तो सब भी जो अब पूजा भट्ट रही है फरमाइश रही और

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में इंदी अपनी गप्पा तो हूँ कर देना आर जे सचिन कपूर सोगी पूजा भट्टी फरमाइश में प्यार दे गीत है सब ये हूँ हाँ शोतो तो चलिए अब कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगू बढ़न दिन और कार्यक्रम मन शोतो अब अगली कुछ जानकारी के अंशों भी तुझ होगी ज़रूर शेयर कर लेन देन कजू की इतों बाद फिर वक्त बुझेगा तुझ सब भी तो अलविदा लेने रहा तो सभी सो टाटा बाय बाय बलने रहा तो चलिए जी बिल्कुल लाइट चले आया लाइट रहे किससे भी ना जिंदगी में भी कुछ ऐसे किस्से बनते हैं छोतों जने लाइट बनते हैं यानी कि जहने जिंदगी खरी चलती है तो उसको लगता कि खरी लाइट और जहने जिंदगी डगमगाना लगी पेंदे छोतों तो लगता कि लाइट आए नहीं है ना कुछ ऐसे ही किस्से के न सोईड़ी भी बनते हैं तो बहरहाल तो सब हूँ कर दिन कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा और कार्यक्रम आर जे सचिन कपूर सो के हूँ कर दे थी ये जो कि श्रोतों में बेता वक्त बुझेगो ऑलमोस्ट तो सब भी तो अलविदा लेने रहा लेकिन गंद गंदे कुछ एक जानकारी के अंश जरूर तुझ हो गया शेयर कर दे इन श्रोतों जी बिल्कुल कुछ एक खास जानकारी रही और किया सो नज़र फिर दहीन अपना परिवार सुखी परिवार योजना तो प्रदेश में 1.78 लाख परिवार श्रोतों शामिल भूणे हैं और खुश भूणे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू है घोषणा करे है श्रोतों की अति निर्धन परिवार जो कि आर्थिक स्थिति में सुधार रहे वास्ते योजनाएँ बढ़ाना लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग री समीक्षा बैठक में ये घोषणा किया सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 3, 6 और 8 अगस्त जो जन संवाद कार्यक्रम करवाने किया सुगच्छु कर दे है श्रोतों कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर भूने हिन और यारी अध्यक्षता विधायिका किया सो करने हैं श्रोतों यारा उद्देश्य अति निधन परिवार रे विकास और कल्याण रे योजना पर व्यापक चर्चा करने हैं श्रोतों जनसंवाद कार्यक्रम रे वास्ते ग्राम पंचायत रे क्लस्टर बनाए बन रहे हैं श्रोतों प्रत्येक क्लस्टर मां अधिकतम 10 ग्राम पंचायत किया सो चिन्हित भूणी हिन श्रोतों इसे सोगी अगली जानकारी भी तुसोगी जरूर शेयर करींदे इन श्रोतों सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट सेवा देने वाले 25 शिक्षकों मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्य जो किया सो इस वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार तो सम्मानित किया सो करना है श्रोतों स्कूल शिक्षा निदेशालय किया सो वर्ष 2026 राज्य शिक्षक पुरस्कार वास्ते किया सो आवेदन और नामांकन किया सो आमंत्रित करे हैं श्रोतों पात्र शिक्षक 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पुरस्कार शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर जो किया सो प्रदान ए भूने हैं जो पुरस्कार मूलने हैं जो प्राइज मूलने ना सो 5 सितंबर जो किया सो इन्हों मूलने हैं श्रोतों इस बार नई राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना किया सो लागू हुए है श्रोतों और तेरे तहत ही शिक्षका वे चयन में सीखने वे परिणाम और स्कूल में नामांकन बढ़ाने सूचना मतलब शिक्षा सुधार में योगदान जैसे मान को भी अधिक महत्व किया सो दिच्छु कर दें तो श्रोतों फिलहाल ता टाइम बुझ गो तुसु सब भी थो अलविदा लेने रहा तुसु सब भी जो बाय बाय बलने रहा और सचिन कपूर ले लेनो तुसु थो अवे इजाजत गंदे गंदे प्यारे दे गीत जरूर होननो तुसु श्रोतों हंसते रहे मुस्कुराते रहे माँ बाप री से

कर दे रहा, प्यारा होगी जरूर रहा, हर रिश्ते जो किया सो जरूर अच्छे होगी नहीं बा। आओ सचिन कपूर लेनो आ इजाजत कि सोने तो भूंदे नाइया पर दिल अरे सच्चे ने।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। ऑटोइम्यून असंतुलन से बच्चों में टाइप 1 मधुमेह का खतरा। हिमकेयर की जगह अब इंश्योरेंस स्कीम, मरीजों को मिल सकेगा कैशलेस उपचार। अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6 अगस्त से प्रदेश भर में जनसंवाद। प्रदेश के 25 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार, आवेदन 8 अगस्त तक। स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे हिमाचल का इतिहास और परंपराएं। कचरा निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीसी, प्रदूषण बोर्ड करेगा निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक अजय पराशर 29 वर्षों की सराहनीय सेवा के उपरांत संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए। जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधवी पराशर एवं सुपुत्र अमृतेश पराशर भी उपस्थित रहे। कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके स्वस्थ एवं सुखद सेवानिवृत्ति जीवन की मंगल कामना की। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत समस्त प्राध्यापकों विद्यार्थियों अभिभावकों तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का महाविद्यालय में बीबीए बीसीए व पीजीडीसीए पाठ्यक्रम शुरू करवाने पर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया महाविद्यालय आए थे। उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि कॉलेज में शीघ्र ही बीबीए बीसीए और पीजीडीसीए की कक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। अब उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया, जिससे विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए महाविद्यालय परिवार विधायक केवल सिंह पठानिया का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से ये मांग पूरी हो सकी। ऑटो इम्यून सिस्टम के असंतुलन से 6 माह से 18 वर्ष तक की आयु तक टाइप 1 मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि ये लक्षण सभी बच्चों में दिखाई नहीं देते, लेकिन ऑटो इम्यून असंतुलन की वजह से कुछ बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के लक्षण उभर आते हैं। यदि समय पर उपचार न कराया जाए तो इससे डायबिटिक कीटोएडोसिस का खतरा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में बच्चे तेज व गहरी सांस लेने, उल्टी पेट दर्द, अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी जैसे विकारों की चपेट में आ जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 6 माह से 18 वर्ष के बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जगह नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले पात्र मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी दवाओं पर अंकुश लगाना है। प्रस्तावित योजना से में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि मरीजों की पर्ची में दर्ज लिखे गए टेस्ट और उपचार का डिजिटल स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। अपना परिवार सुखी परिवार योजना से प्रदेश में लगभग 1.78 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि इन अति निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6, 7 और 8 अगस्त को जनसंवाद कार्यक्रम करवाने जा रही है। कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। इनका उद्देश्य अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण के लिए योजनाओं पर व्यापक चर्चा करना है। जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 25 शिक्षकों, मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को इस वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। पात्र शिक्षक 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पुरस्कार शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस बार नई राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके तहत शिक्षकों के चयन में सीखने के परिणाम, नवाचार, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और शिक्षा सुधार में योगदान जैसे मानकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब अपने राज्य के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, बोलियों और पारंपरिक व्यंजनों की विस्तृत जानकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिलेगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 6ठी से 8वीं कक्षा की पुस्तकों में व्यापक बदलाव और सुधार पर चर्चा की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय बोलियां, पारंपरिक खानपान और समकालीन चुनौतियों से जुड़ी जानकारी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्रागैतिहासिक काल से लेकर राज्य गठन तक की यात्रा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, कारगिल युद्ध के वीरों, सैनिकों और प्रदेश की विशिष्ट पहचान से जुड़े तथ्यों को रोचक ढंग से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वर्दी योजना के तहत 600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि उन्हें विद्यालय वर्दी खरीदने में आर्थिक सहायता मिल सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण विद्यालय वर्दी खरीदने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सहायता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नादौन नगर परिषद क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अब कचरा निपटान की सीधी जवाबदेही संबंधित डिप्टी कमिश्नर डीसी की होगी। हाईकोर्ट ने डीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से डंपिंग साइट का भौतिक निरीक्षण कर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्यावरण नियमों के पालन की पुष्टि हो सके। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नए हिमबस प्लस कार्ड की शुरुआत हो गई है। सोलन जिला के क्यारी घाट से प्रदेश मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस कार्ड की विधिवत रूप से शुरुआत की। उनका कहना है कि हिमबस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। ये स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाएं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। ये कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उनका कहना है कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। और श्रोताओं, अब से लेके 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपके साथ धर्मशाला और आसपास की जानकारियाँ साझा, आपके साथ बातचीत का भी आनंद उठाएंगे और साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से फिल्मी गीत, आपकी शाम को और भी ज़्यादा सुहाना और रंगीन बनाने के लिए हाजिर हो गए हैं श्रोताओं। और सबसे पहले आइए करते हैं मौसम की बात। इस वक्त धर्मशाला का तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 92%। जी हाँ श्रोताओं, और सामान्यतः अगर मौसम की बात करें, खासकर आज के धर्मशाला के मौसम की, तो आज कुछ स्थानों पर जो है वो अलर्ट भी बताया गया था। और धर्मशाला, खासकर अपनी धर्मशाला की बात करें, तो कह सकते हैं कि मौसम आज सुहावना रहा। बारिश भी नहीं हुई और इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी कि हम लोग धूप का आनंद उठा पाते या धूप में अपने कपड़े सुखाते या कुछ ऐसे काम निपटाते जो कि धूप की वजह से होते हैं। लेकिन फिर भी जो भी आज का मौसम था, उस मौसम को हम सभी धर्मशाला वालों ने इंजॉय किया जहाँ तक मुझे लगता है। और जो भी छोटे मोटे काम थे हमारे, जो इस तरह के मौसम में निपटाए जा सकते हैं, उनको हमने बखूबी अच्छे से आज निभाया है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत भी करेंगे और आपको प्यारे प्यारे गीत भी सुनाएंगे। तो कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको इस वक्त का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का ये सबसे प्यारा सा नगमा, लावारिस फिल्म का गीत, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं क्या कहता है हमारा आज का विचार। श्रोताओं मन की शांति सबसे महंगा गहना है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि मन की शांति सबसे महंगा गहना है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। जी श्रोताओं मन की शांति सबसे महंगी है आज के दौर में, न सिर्फ आज के दौर में बल्कि मन की शांति हर किसी के लिए ज़रूरी है और हर दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। हम अपनी संपत्ति को, धन संपदा को बहुत संभाल कर संजो कर रखते हैं और उसे संभालने और संजोने के चक्कर में कई बार हम अपनी मन की शांति को भंग कर देते हैं। अब हमारे पास बहुत सी धन दौलत है, खूब सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर मन की शांति ही नहीं है तो सोचिए उस दौलत का, उस पैसे का और इतनी सारी सुख सुविधाओं का क्या ही अर्थ रह जाता है और क्या ही मज़ा रह जाता है अगर हमारे मन में शांति ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है और आज का विचार भी हमने इसीलिए चुन के आपके लिए लिया है कि मन की शांति को बनाए रखने के लिए आप हर उस चीज़ का त्याग कर दें जो आपके मन की शांति को भंग करता है। मन की शांति को बनाए रखिए और मन की शांति अगर आपके पास है, आपका मन अगर शांत है, तो आपको ज़िंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता और शांत मन के साथ आप अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद जो है वो उठा सकते हैं। तो श्रोताओं ये था हमारा आज का विचार। बता दें आपको इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब रुक करते हैं श्रोताओं फिर से कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और रेडियो गुंजन धर्मशाला आपकी सेवा में समर्पित है। सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से नए नए से कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं, जिनमें मनोरंजन भी होता है, जानकारियां भी होती हैं और समसामयिक जो चल रहा होता है उससे संबंधित भी अधिक से अधिक जानकारियां हम आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। और श्रोताओं, ये आप सभी श्रोताओं का प्यार ही है रेडियो गुंजन के साथ, जो हमें ये सब करने के लिए जो है प्रेरित करता है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में बातचीत भी करेंगे श्रोताओं आपके साथ और जानकारियां भी साझा करेंगे, लेकिन कई बार हम बातचीत करते करते इतनी ज़्यादा बातचीत करते हैं कि समय का हमें आभास ही नहीं रहता कि हम बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। इसलिए बातें उतनी ही करेंगे जितनी की मिठास रहे और गाने भी प्यारे प्यारे आपको इतने सुनाएंगे जिससे कि आपका मनोरंजन होता रहे और आप रेडियो गुंजन के साथ यूं ही बने रहे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने बन की।

91.2 MHz पर आप हैं श्रोताओं, इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। अब रुक करते हैं जानकारियों की ओर। शाहपुर के बोह में आपदा प्रभावित परिवारों को बांटी राहत सामग्री। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कांगड़ा की अध्यक्ष ज्योति बैरवा ने गुरुवार को शाहपुर उपमंडल के आपदा प्रभावित परिवारों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों का कुशल क्षेम जाना तथा उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से प्रभावित परिवारों को दैनिक उपयोग की आवश्यक राहत सामग्री वितरित की गई। राहत सामग्री में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, हैंड वॉश, सैनिटरी पैड्स, तौलिए, पेयजल, इलेक्ट्रोलाइट, जूस, बिस्किट, नमकीन, छाते, रेनकोट, फल, स्कूल बैग, कपड़े तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। इस अवसर पर ज्योति बैरवा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हम सभी का नैतिक दायित्व है। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उप मंडलाधिकारी शाहपुर गणेश ठाकुर, नायब तहसीलदार तरीनी राजेंद्र सिंह, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी शर्मा तथा सोसाइटी की आजीवन सदस्य अनीता मनकोटिया, शारदा विष्ट, संतोष शर्मा, बबीता बहल भी उपस्थित रहे। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो आइए आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ, आज का दिन यानी 31 जुलाई। श्रोताओं 31 जुलाई यानी महीने का अंत, और आज जुलाई का महीना जो है लगभग खत्म हो जाएगा और अगस्त की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज 31 जुलाई है और आज के दिन शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। श्रोताओं ये दिन

महान भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारा था। छब्बीस दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम संगरूर में इनका जन्म हुआ था और उधम सिंह का मूल नाम, उनका बचपन का नाम शेर सिंह था। इकतीस जुलाई 1940 को उन्हें लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग के मासूम शहीदों की मौत का प्रतिशोध 21 साल बाद पूरा किया था। इसीलिए आज यानी 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। श्रोताओं, MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियां भी होंगी, बातचीत का भी आनंद उठाएंगे, साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए लेकर के आए हैं आज हम प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब एक जानकारी साझा कर रहे हैं श्रोताओं आपके साथ। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में आज संयुक्त निदेशक अजय पराशर और वरिष्ठ आशुलिपिक अश्विनी कुमार के सम्मान में गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। अजय पराशर ने 27 जुलाई 1998 को जिला लोक संपर्क अधिकारी के रूप में अपनी सेवाओं की शुरुआत की। लगभग 28 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता से विभाग में उल्लेखनीय योगदान दिया। अश्विनी कुमार ने 7 जून 1988 को विभाग में आशुटंकक के पद पर सेवाएं शुरू की। लगभग 38 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने गिरिराज साप्ताहिक कार्यालय शिमला और निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजीव कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने अजय पराशर और अश्विनी कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अजय पराशर की निपुण कार्यशैली, कार्यकुशलता और सकारात्मक सहयोग युवा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनकी प्रतिभा और कार्य के प्रति समर्पण भाव और अनुशासन उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। निदेशक ने अश्विनी कुमार की विभाग के प्रति बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार के कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन विभागीय कर्मियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो विभाग के लिए आने वाले वर्षों तक प्रेरणादायक रहेगा। राजीव कुमार ने सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी के सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। गीत साजन फिल्म से, और ये वही साजन फिल्म है श्रोताओं जिसकी कहानी ने भी धूम मचाई थी। और इसके जो गीत थे, चाहे वो डांसिंग नंबर थे या सुनने वाले थे, इन सभी गीतों ने अपने उस दौर में बहुत रंग जमाया था। और जब भी इन गीतों को सुनते हैं, हम उसी 90 के दशक में खो जाते हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको साजन फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिए तो जिए कैसे।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं जुदाई फिल्म का गीत। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप ही समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। श्रोताओं 7:05 पर भी उससे पहले लीजिए सुनिए समाचार।

0: है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले इलाकों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी श्रोताओ और अब कार्यक्रम में समाचारों के बाद और अंतराल के बाद सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब फिर से चलते हैं और बातचीत करते हैं आज के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, आज है 31 जुलाई और आज के दिन एक और खास दिन हम कह सकते हैं जो कि मनाया जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी। 31 जुलाई 1880 आज ही के दिन मुंशी प्रेमचंद जी का जो है वो जन्म हुआ था। धनपत राय श्रीवास्तव, उन्हें उनके उपनाम प्रेमचंद के आधार पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय लेखक जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए बेहद प्रसिद्ध थे।

श्रोताओं, प्रेमचंद हिंदी और उर्दू सामाजिक कथा साहित्य के अग्रणी लेखक थे। वे 1880 के दशक के उत्तरार्ध में जातिगत पदानुक्रम और महिलाओं और श्रमिकों की दुर्दशा पर लिखने वाले पहले लेखकों में से एक थे। वे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। उन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभिक हिंदी लेखकों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाओं में गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर और ईदगाह शामिल हैं। उन्होंने अपनी 5 लघु कहानियों का पहला संग्रह 1907 में सोजे वतन राष्ट्र का दुख नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। उनकी रचनाओं में एक दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 300 लघु कथाएं, कई निबंध और कई भारतीय और विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी में अनुवाद शामिल है। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोताओ, 31 जुलाई, क्या कुछ खास रहता है आज के दिन। आज हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जो है वो जन्म दिवस होता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास स्थित लम्ही गांव में हुआ था और उनका नाम धनपत राय रखा गया था। उनके पूर्वज एक बड़े चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार से थे जिसके पास 8 से 9 बीघा जमीन थी। उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी थे और उनके पिता अजैब लाल डाकघर में क्लर्क थे। उनकी माता करौनी गांव की आनंदी देवी थी जो संभवतः उनके उपन्यास बड़े घर की बेटी में आनंदी के चरित्र की प्रेरणा भी थी। धनपत राय अजैब लाल और आनंदी की चौथी संतान थे। पहली 2 बेटियां थी जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और तीसरी बेटी का नाम समा था। उनके चाचा महावीर एक धनी जमींदार थे जिन्होंने उन्हें नवाब उपनाम दिया था। नवाब राय धनपत राय द्वारा चुना गया पहला उपनाम था। 7 वर्ष की आयु में धनपत राय ने वाराणसी के लालपुर में स्थित लाम्ही के निकट एक मदरसे में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने मदरसे में एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। 8 वर्ष की आयु में उनकी माता का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। उनकी दादी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उनका भी कुछ समय बाद देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने अलगाव महसूस किया क्योंकि उनकी बड़ी बहन सुग्गी का पहले ही विवाह हो चुका था। उनके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उनके पिता जिनका अब गोरखपुर में तबादला हो गया था उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया, लेकिन प्रेमचंद को अपनी सौतेली माँ से बहुत ही कम प्यार मिला। सौतेली माँ बाद में प्रेमचंद की रचनाओं में एक आवर्ती विषय बन गई। बचपन में धनपत राय को कहानियों में सुकून मिलता था और किताबों से उनका गहरा लगाव हो गया था। उन्होंने एक तंबाकू की दुकान पर फारसी भाषा के काल्पनिक महाकाव्य तिलिस्मे होशरुबा की कहानियां सुनी। उन्होंने एक पुस्तक थोक विक्रेता के यहाँ किताबें बेचने का काम किया जिससे उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ने का अवसर मिला। उन्हें एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी सीखी और जॉर्ज डब्ल्यू एम रोनाल्ड्स की 8 खंडों वाली रचना द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन सहित कई काल्पनिक कृतियों का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी पहली साहित्यिक रचना गोरखपुर में लिखी जो कभी प्रकाशित नहीं हुई और खो गई। ये एक ऐसे कुंवारे व्यक्ति पर आधारित एक हास्य नाटक था जिसे एक निम्न जाति की महिला से प्यार हो जाता है। ये पात्र प्रेमचंद के चाचा पर आधारित था जो उन्हें कहानियों को पढ़ने के प्रति जुनून के लिए डांटते थे। ये हास्य नाटक संभवतः इसी का बदला लेने के लिए लिखा गया था। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। जी हाँ, हिंदी के बहुत ही विख्यात साहित्यकार। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 MHz पर।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, 1890 के दशक में मध्य में जब उनके पिता का जमानिया में तबादला हो गया तो धनपत राय ने बनारस के क्वींस कॉलेज में डे स्कॉलर के रूप में दाखिला लिया। 1895 में नौवीं कक्षा में पढ़ते समय ही 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। ये विवाह उनके नानी के सौतेले दादा द्वारा तय किया गया था। उनकी एक धनी जमींदार परिवार से थी और प्रेमचंद से बड़ी थी, जिससे प्रेमचंद झगड़ालू और जिसे झगड़ालू और बदसूरत मानते थे। उनके पिता का 1897 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी 60% से कम अंक से उत्तीर्ण की। हालांकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी के छात्रों को ही शुल्क में छूट दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश मांगा, लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। इस प्रकार उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। फिर उन्हें बनारस में एक वकील के बेटे को पढ़ाने का काम मिला, जिसके लिए उन्हें 5 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। वे वकील के अस्तबल के ऊपर बनी एक मिट्टी की कोठरी में रहते थे और अपने वेतन का 60% हिस्सा घर भेजते थे। प्रेमचंद इन दिनों खूब पढ़ते थे। कई कर्जों में डूबने के बाद 1899 में वे अपनी संग्रहित पुस्तकों में से एक को बेचने के लिए एक किताबों की दुकान पर गए। वहां उनकी मुलाकात चुनार के एक मिशनरी स्कूल के प्रधानाध्यापक से हुई। उन्होंने उन्हें 18 रुपये प्रति माह वेतन पर शिक्षक की नौकरी की पेशकश की। उन्होंने 5 के मासिक शुल्क पर एक छात्र को ट्यूशन देने का काम भी किया। 1900 में प्रेमचंद को बहराइच के सरकारी जिला विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में 20 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी मिल गई। 3 महीने बाद उनका तबादला प्रतापगढ़ के जिला विद्यालय में हो गया, जहां वे एक प्रशासक के बंगले में रहते थे और उनके बेटे को पढ़ाते थे। उनका पहला लघु उपन्यास असरारे मा आबिद हिंदी में देवस्थान रहस्य था, जो मंदिरों के पुजारियों के बीच भ्रष्टाचार और गरीब महिलाओं के यौन शोषण को उजागर करता था। ये उपन्यास बनारस स्थित उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्फ में 8 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक श्रृंखला में प्रकाशित हुआ। साहित्यिक आलोचक सिगफ्रीड शूल्स कहते हैं कि उनके पहले उपन्यास में उनका अनुभवहीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सुव्यवस्थित नहीं है, जिसमें अच्छी कहानी का अभाव है और रूढ़िवादी पात्र है। प्रकाश चंद गुप्ता इसे अपरिपक्व रचना कहते हैं, जो जीवन के केवल काले या सफेद रंग में देखने की प्रवृत्ति दर्शाती है। श्रोताओं, कार्यक्रम में इस समय हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। आज यानी 31 जुलाई के दिन मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। १९२० के दशक में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और उससे जुड़े सामाजिक सुधार के संघर्ष से प्रभावित हुए। इस दौरान उनकी रचनाओं में गरीबी, जमींदारी, शोषण, दहेज प्रथा, शैक्षिक सुधार और राजनीतिक उत्पीड़न जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया गया। प्रेमचंद किसानों और श्रमिक वर्ग के आर्थिक उदारीकरण पर केंद्रित थे और तीव्र औद्योगीकरण का विरोध करते थे, क्योंकि उनका मानना था इससे किसानों के हितों को नुकसान होगा और श्रमिकों का उत्पीड़न होगा। भारतीय साहित्य पर प्रेमचंद के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे कि दिवंगत विद्वान डेविड रूबिन ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ प्रेमचंद में लिखा है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में गंभीर लघु कथा और गंभीर उपन्यास की विधा का सृजन करने का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। लगभग अकेले ही उन्होंने इन भाषाओं में कथा साहित्य को दिशाहीन प्रेम कथाओं के दलदल से निकालकर उस समय के यूरोपीय कथा साहित्य के तुलनीय यथार्थवादी कथा साहित्य के उच्च स्तर तक पहुँचाया और दोनों भाषाओं में वे एक अद्वितीय उस्ताद बने रहे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने जटिल नाटक के मंच के रूप में ग्रामीण जीवन पर ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि उपन्यास गोदान और लघु कथा संग्रह कफन में देखा गया है। प्रेमचंद का मानना था कि समकालीन बंगाली साहित्य की नारित्व गुणवत्ता, कोमलता और भावना के विपरीत सामाजिक यथार्थवाद ही हिंदी साहित्य का मार्ग था। श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। योजना के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत। प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र होगा जारी। 5 से 25 वर्ष तक रहेगी मान्यता अवधि। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला की 2 महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन कार्य के लिए जारी राशि के लिए केंद्र का जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौकरियों के नाम पर झूठ बोलने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, आगामी 24 घंटों में 5 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है।
2: किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया। पीएम किसान योजना देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है।
1: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में ऐसे 12,500 उद्योग पंजीकृत हैं जिन्हें बोर्ड से बार बार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, लेकिन अब इस व्यवस्था परिवर्तन से उद्योगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी होने पर उसकी मान्यता अवधि 5 से 25 वर्ष तक की रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के वर्ग के आधार पर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सीमा तय की गई है और इस प्रणाली के लागू होने से 70% लिपिकीय कार्य कम होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स फिटनेस व इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026 का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए पैवेलियनों में विभिन्न स्टॉलों पर तैनात प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी और जानकारीपूर्ण संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन नीति निर्माताओं, खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों, उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। ये आयोजन भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद और प्रयासों के बाद शिमला जिला के छैला नेरीपुल यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए लगभग 203 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सड़क कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और आसपास के बागवानी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह ने इस धनराशि के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।
3: जो हमारी छैला सैन यशवंत नगर राजगढ़ सड़क है, जो एक मुख्य सड़क हमारे चौपाल, जुब्बल कोटखाई और रोड़ू क्षेत्र के बागवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसके अपग्रेडेशन के लिए हम लगातार, मैं नितिन गडकरी जी से मिल रहा था और अभी हमको उसके लिए करीबन 240 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है। और मैंने फोन भी किया नितिन गडकरी जी को, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, उनका धन्यवाद किया, मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जल्द से जल्द की सारी औपचारिकताएं पूरी करे। ये एक बहुत बड़ी सौगात है और इससे हिमाचल के, खास करके शिमला जिला के जो हमारे बागवान हैं, उनको एक बड़ी राहत आने वाले समय में मिलेगी। तो उसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी, गडकरी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग जो इसमें रहा है उनका भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि टिक्कर जरोल खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए भी केंद्र ने 35,93,00,000 रुपए मंजूर किए हैं।
3: हमारा जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर बुशहर, वहाँ का जो ननखड़ी क्षेत्र है, हालांकि वहाँ के लिए हमको पहले उसमें काफी सहयोग करीबन 60 करोड़ रुपए का मिला, उसका कार्य चला हुआ है, कुछ उसमें पोर्शन बच गया था 16 किलोमीटर का, उसके लिए भी हमको मेरे विशेष निवेदन पर 35 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए, का भी प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। वो भी हमारा सेफ बहुल्य क्षेत्र है, कोटगढ़ का, टिक्कर खमाड़ी का।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर नौकरियों के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोलने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कैबिनेट में नौकरियां घोषित की जाती हैं और फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि HAS और अलाइड सर्विसेज की भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे इन पदों की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हजारों युवा निराश हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह JOA लाइब्रेरी भर्ती को वित्त विभाग ने 2 साल पहले सहमति दी थी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 लाख नौकरियों की झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार में मित्रों को एक्सटेंशन दी जा रही है, जिससे आम लोगों की नौकरियां खत्म कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के डाड गांव निवासी व भारत के 14वें सेना प्रमुख रहे जनरल विश्वनाथ शर्मा का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। जनरल VN शर्मा ने वर्ष 1988 से 1990 तक सैन्य प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र सेवा के माध्यम से भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को सुदृढ़ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को सशक्त बनाने में जनरल VN शर्मा के अमूल्य योगदान को सदा याद किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज चंबा जिले के डलहौजी में प्रस्तावित बस अड्डा स्थल का निरीक्षण कर निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और परियोजना से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने कहा कि डलहौजी में आधुनिक बस अड्डे के निर्माण से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज भी मॉनसून की भारी वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा, जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से बंद 211 सड़कों को खोलने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों को खोलने के लिए करीब 560 मशीनें तैनात की गई हैं।
3: करीबन जो है 211 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हुई और उसमें से 121 सड़कें जो है वो आज शाम तक खोल दी जाएगी और अगले 37 सड़कें जो है वो कल तक खोल दी जाएगी और उसमें हमारी मशीनें जो है वो डिप्लॉयड है, करीबन 560 के करीब मशीनरी लगी हुई है।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति जिला के संसारी नाला किलाड़ थिरोट तांदी मार्ग पर जहलमा नाले पर निर्मित स्थायी वैली ब्रिज का आज उपायुक्त किरण बढ़ाना ने लोकार्पण किया। सीमा सड़क संगठन ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड समय में इस पुल का निर्माण पूरा किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: लगभग 2,50,00,000 रुपए की लागत से बने इस पुल पर फिलहाल हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जबकि भारी वाहन लगभग एक सप्ताह बाद ही चल सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि 26 मई को हुए भीषण भूस्खलन में पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण किसानों, बागवानों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीमा सड़क संगठन ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड समय में नए पुल का निर्माण किया। नए पुल के शुरू होने से अब क्षेत्र में यातायात, कृषि, बागवानी और पर्यटन गतिविधियों को फिर से गति मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। योजना के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत। प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र होगा जारी। 5 से 25 वर्ष तक रहेगी मान्यता अवधि। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला की 2 महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन कार्य के लिए जारी राशि के लिए केंद्र का जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नौकरियों के नाम पर झूठ बोलने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। आगामी 24 घंटों में 5 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9 बजे।
0: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के बिल्कुल उसी पड़ाव पर जब हमें ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों वक्त का दस्तूर है कि वो गुजरता ही रहता है। इसलिए इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: चुपके होंगे।
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट टेस्ट टेस्टिंग।
2: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सबकी तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है, अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। ऑटोइम्यून असंतुलन से बच्चों में टाइप 1 मधुमेह का खतरा। हिमकेयर की जगह अब इंश्योरेंस स्कीम मरीजों को मिल सकेगा कैशलेस उपचार। अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6 अगस्त से प्रदेश भर में जनसंवाद। प्रदेश के 25 शिक्षकों को मिलेगा राज्य पुरस्कार, आवेदन 8 अगस्त तक। स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे हिमाचल का इतिहास और परंपराएं। कचरा निपटान के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे डीसी, प्रदूषण बोर्ड करेगा निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक अजय पराशर 29 वर्षों की सराहनीय सेवा के उपरांत संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए। जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर माधवी पराशर एवं सुपुत्र अमृतेश पराशर भी उपस्थित रहे। कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके स्वस्थ एवं सुखद सेवानिवृत्ति जीवन की मंगल कामना की। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत, समस्त प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया का महाविद्यालय में BBA, BCA व PGDCA पाठ्यक्रम शुरू करवाने पर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया महाविद्यालय आए थे। उस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि कॉलेज में शीघ्र ही BBA, BCA और PGDCA की कक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी। अब उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया, जिससे विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए महाविद्यालय परिवार विधायक केवल सिंह पठानिया का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से ये मांग पूरी हो सकी। ऑटो इम्यून सिस्टम के असंतुलन से 6 माह से 18 वर्ष तक की आयु तक टाइप 1 मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि ये लक्षण सभी बच्चों में दिखाई नहीं देते, लेकिन ऑटो इम्यून असंतुलन की वजह से कुछ बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के लक्षण उभर आते हैं। यदि समय पर उपचार न कराया जाए तो इससे डायबिटिक किटोएटोसिस का खतरा पैदा हो जाता है। इस स्थिति में बच्चे तेज व गहरी सांस लेने, उल्टी पेट दर्द, अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी जैसे विकारों की चपेट में आ जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 6 माह से 18 वर्ष के बच्चों में टाइप 1 मधुमेह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना की जगह नई इंश्योरेंस आधारित स्वास्थ्य योजना लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विभागीय स्तर पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले पात्र मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी दावाओं पर अंकुश लगाना है। प्रस्तावित योजना से में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि मरीजों की पर्ची में दर्ज लिखे गए टेस्ट और उपचार का डिजिटल स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। अपना परिवार सुखी परिवार योजना से प्रदेश में लगभग 1.78 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि इन अति निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की। सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना में 6, 7 और 8 अगस्त को जनसंवाद कार्यक्रम करवाने जा रही है। कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। इनका उद्देश्य अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण के लिए योजनाओं पर व्यापक चर्चा करना है। जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 25 शिक्षकों, मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्य को इस वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। पात्र शिक्षक 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पुरस्कार शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस बार नई राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके तहत शिक्षकों के चयन में सीखने के परिणाम, नवाचार, स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और शिक्षा सुधार में योगदान जैसे मानकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब अपने राज्य के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, बोलियों और पारंपरिक व्यंजनों की विस्तृत जानकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिलेगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 6ठी से 8वीं कक्षा के पुस्तकों में व्यापक बदलाव और सुधार पर चर्चा की गई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, स्थानीय बोलियां, पारंपरिक खानपान और समकालीन चुनौतियों से जुड़ी जानकारी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्रागैतिहासिक काल से लेकर राज्य गठन तक की यात्रा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, कारगिल युद्ध के वीरों, सैनिकों और प्रदेश की विशिष्ट पहचान से जुड़े तथ्यों को रोचक ढंग से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वर्दी योजना के तहत 600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि उन्हें विद्यालय वर्दी खरीदने में आर्थिक सहायता मिल सके। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण विद्यालय वर्दी खरीदने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सहायता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नादौन नगर परिषद क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अब कचरा निपटान की सीधी जवाबदेही संबंधित डिप्टी कमिश्नर डीसी की होगी। हाईकोर्ट ने डीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से डंपिंग साइट का भौतिक निरीक्षण कर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि पर्यावरण नियमों के पालन की पुष्टि हो सके। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नए हिमबस प्लस कार की शुरुआत हो गई है। सोलन जिला के क्यारी घाट से प्रदेश मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस कार की विधिवत रूप से शुरुआत की। उनका कहना है कि हिमबस प्लस कार की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। ये स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाएं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। ये कार्ड मात्र 365 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उनका कहना है कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तू अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने,

0: टेस्ट चुपके हो गए।
1: माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ARTसेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है? अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है क्या मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती? अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज। तू ही लाया इसे।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं, आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी, 10 रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के?
3: ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है?
4: 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था?
5: मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं।
4: छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है?
2: जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले।
5: तैं अपने खाने की चिंता कर, इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं, आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी माँ की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने।

0: चुप क्यों हो गए?
1: माइक टेस्ट टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट
2: टेस्ट टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब आप चुप रहते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जबान काम नहीं करती तब आपका दिमाग काम करता है। आप एक बार शांति से बैठ के सब की तरफ नजरें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाओगे। और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो आप इंसान को समझ जाओगे और फिर आपको पता लगेगा कि इंसान अच्छा है या बुरा है और आपकी जिंदगी अपने आप फिल्टर हो जाएगी।
6: मम्मी मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब इसे मुझसे हर समय लड़ना ही था तो ये मुझसे लव मैरिज क्यों करके आई है, अरेंज मैरिज नहीं कर सकती थी ये?
7: पागल लिखा है कि मेरे माथे पे जो अरेंज मैरिज कर लेती, अगर अरेंज मैरिज कर लेती ना तो तुम 50 लोगों के आगे जाके बोलते कि घर वालों ने कैसी लड़की से शादी करी है जो हर समय लड़ती ही रहती है। अब बोल के बताओ तुम, अब हर कोई तुम्हें यही बोलेगा और कर ले लव मैरिज, तू ही लाया इसे।

इस दुनिया से तुम आई हो, हो, हो सिमटी सी शर्माई थी।

मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हसी, बस एक तुम्हें रखती हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो सिमटी सी। हाँ

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।